0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की पहली अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
1: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब

0: डायरेक्टर तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने शेयर बाजारों को वित्तीय नतीजों को जमा करने संबंधी अपने विनियमनों के अंतर्गत सूचीबद्ध ऋण साधन वाले नगर पालिकाओं की समय सीमा में छूट दी है। कल जारी किए गए नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध नगर पालिकाओं को अब बिना ऑडिट वाले पहली छमाही के नतीजे 60 दिनों के भीतर जमा करने होंगे, जबकि पहले ये समय सीमा 45 दिन की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
0: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराने जाने की जरूरत है।
1: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करुण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. The Lok Sabha had passed the bill yesterday. Rajya Sabha is also likely to take up the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 for consideration and passing today. In the Lok Sabha, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 will be tabled for consideration and passing. Yesterday, the proceedings of both the Houses of Parliament were once again disrupted following opposition uproar on various issues. Lok Sabha passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 and the Rajya Sabha passed the Tribunals Reforms Bill 2026. India has reiterated that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India and nothing can change this indisputable reality. Briefing media in New Delhi yesterday, External Affairs

आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 MHz ते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ऐप ते तुसी सर्वन कर रहे हो प्रोग्राम

0: पुलिस।
1: मिस सीमा।
0: हाँ जी।
1: हुणे पुलिस थाने आओ। रुको, नहीं ता कारा जावांगे। हाँ
0: क्यों? पर मैं
1: कल दूजे कमरे विच जाऊं। तुहाडा बेटा साडी हिरासत विच है अते तुसी डिजिटल अरेस्ट विच हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दियो, बच जाओगे।
0: इन्ने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजा है, उन्हें प्रोसेसिंग लिए 30,000 दियो, नहीं ता बेटा जेल जावेगा।
0: जेल ता तू जावेगा, तेरा चेहरा रिकॉर्ड हो गया है।
1: ओए,
0: डिजिटल अरेस्ट जेहा कुछ नहीं हुंदा, ये सब फ्रॉड है, इसलिए घबराओ ना। पुलिस, बैंक, RBI आदि दे नाम तो आने वाले साइबर अपराधियों दे फोन कॉल या वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उन्हां नू पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नू रिपोर्ट करो।
2: हेलो मम्मा।
0: हाय।
3: RBI कहता है
0: जानकार बनो, सुचेत रहो।
4: आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 MHz अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज ऑन AIR ते तुसी आनंद माण रहे हो प्रोग्राम सजरी सवेर दा।
5: समा साथियों, तुसी अपनी मोबाइल ते घड़ी दियां सुइयां ते भी मिला सकदे हो जी 7:25 ते 20 दा 101.1 MHz यानी कि 101.1 MHz से दोस्तों जारी है प्रोग्राम सजरी सवेर दा सफर। और दोस्तों सजरी सवेर दे इस सफर विच हुण गल करदे हां अज दे दिन दी, खास दिन दी यानी कि 12 अगस्त दे इतिहास दे पन्नियां ते मारदे हां इक नज़र। जी दोस्तों, जे मैं साडे भारत दे हिंदुस्तान दी गल करां तां 12 अगस्त दा दिन इस लई भी असीं याद करदे हां क्योंकि अज दे दिन शहीद खुदी राम बोस की शहादत नूं याद किया जाता है। जी हाँ, खुदी राम बोस बंगाल के नौजवान एक क्रांतिकारी सन। वह सिर्फ 18 साल की उम्र में अंग्रेज सरकार विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियां कारण फांसी चढ़े। 30 अप्रैल 1908 नूं उन्हां अते प्रफुल चाकी के मुजफ्फरपुर जस डगज किंग फोर्स नूं निशाना बनाते हुए बंब सुट्टिया सी। जी हाँ दोस्तों, 11 अगस्त नूं उन्हां नूं फांसी दी गई ते अगले दिन यानी कि 12 अगस्त 1908 नूं अमृता बाजार पत्रकार ने उन्हां दी मौत बारे खबर प्रकाशित की। इस करके 12 अगस्त दी जिहड़ी खुदी राम बोस की शहादत नूं याद करन नाल जुड़ी तारीख बन गई। और साथियों, अज 12 अगस्त एक असी होर दिन मना रहे हैं, वह मना रहे हैं जी इंटरनेशनल यूथ डे यानी कि कौमांतरी युवा दिवस। बिल्कुल जी, नौजवानों नूं दरपेश मुद्दों वल अंतरराष्ट्रीय भाईचारे का ध्यान खिंचना अते समाजिक बदलाव विच नौजवानों की भागीदारी नूं उत्साहित करना इस दिन का मुख मकसद है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1999 दे विच 12 अगस्त नूं कौमांतरी युवा दिवस वजों घोषित किया सी।

प्रोग्राम प्रसारण संबंधी सूचना अज दोपहर 12:30 ते प्रोग्राम घर परिवार दे अंतर्गत हफ्तावारी सिलसिला चानण मुनारे विच साडे मेहमान होणगे प्रोफेसर गुरजीत कौर ते मुलाकाती होणगे गुरदीप गिल जी। सो सुनना ना भुलना अज दोपहर 12:30 सिलसिला चानण मुनारे।

0: 6-7 गिलास ही पानी मंग रही है, इतना ही पीता जा रहा है।
1: जी
0: सब तो पहला अपनी बॉडी दी सुनना, जिवें
1: जी
0: तुसी मेरे नाल गल कीती कि ब्रेकफास्ट जरूरी है, साडे बुजुर्गां दी गल करिए तां 2 ही मील खांदे सीगे,
1: जी
0: है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन योर बॉडी, ना
1: जी
0: कि सोशल मीडिया।
1: बिल्कुल
0: हाँ, तुसी अपने नजदीक दे किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट कोले, किसी भी डाइटिशियन, किसी भी डॉक्टर को दी सलाह ले सकते हो, लेकिन तुसी मतलब अंधाधुंध जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है ओनू ना मानो।
1: जी। सो मैडम, चलते चलते एक खास ते जरूरी जिहड़ा सवाल मैं तुहानूं जरूर पूछना चाहूंगा, वो है जी साडे दिल बारे। सो जी
0: हाँ जी,
1: मैम, दिल दी सेहत लई कीड़ी खुराक है आपां कह सकदे हां वधिया मन्नी जा सकदी है, क्योंकि साडे मालवे दे या बहुत सारे साडे इस तरह दे पेशेंट मिल जांदे ने। अजकल नौजवानां दे अंदर भी इह प्रॉब्लम शुरू हो रही है हार्ट दी। सो दिल नूं सेहतमंद रखण लई कीड़ी खुराकां, असी कीड़े जिहड़ियां चीजां ने, विटामिन ने असी उह लै सकदे हां।
0: बहुत ही सोहना सवाल सर, इस लिए जरूरत भी सीगी। सब तो अच्छा जेड़ा मैं कहूंगी एदे लिए है अलसी, फ्लैक्स सीड।
1: ओके okay.
0: अलसी, अलसी नू लोकी वैसे ही खा लेंदे है, इस
1: जी
0: ओनू खान दा भी एक तरीका है। तुसी रोस्ट करके अलसी नू ते ओदी पाउडर कर लो, ते
1: जी
0: 1 चम्मच अलसी दा पाउडर तुसी दिन च किसी भी टाइम लै सकदे हो।
1: जी
0: तुसी ओनू अपनी चपाती, रोटी, पराठे दे अंदर पा सकदे हो, तुसी ओनू दही च पा के लै सकदे हो। दही च पा के लोगे इस टाइम ते बेस्ट है वो कॉम्बिनेशन।
1: जी
0: सीजनल जिन्नियां सब्जियां है, घिया, तोरी, टिंडा, ये
1: ओके
0: जिन्नियां सब्जियां हैं ये वाटर वेजिटेबल्स हैगियां, ये साड़ी बॉडी चो फाइबर ले, फाइबर जांदा बॉडी च, ते ये कोलेस्ट्रोल नू नेचुरली बाहर लेके जांदा।
1: ओके
0: हाँ, ते जिस तरह दी हुण आपां गल करिए कि नट्स है, आपां कहने कि जेड़े आ जेड़े भी आ हुंदे बादाम, अखरोट, ये सानू कोलेस्ट्रोल वधांदे है।
1: ओके
0: कोई भी नट्स थोनू कोलेस्ट्रोल नहीं वधांदा, ओदी एक लिमिटेड मात्रा तुसी जे रेगुलर बेसिस ते खाने हो, जे तुसी सीड्स भी रेगुलर बेसिस ते खाने हो,
1: जी
0: थोड़ा वो गुड कोलेस्ट्रोल वधांदा है, ते ओदे नाल नेचुरली बैड कोलेस्ट्रोल जेड़ा थोड़ा एलडीएल हुंदा है, वीएलडीएल हुंदा है, वो डाउन जांदा
1: ओके
0: है। ते इसलिए तुसी अपनी डाइट दे विच 7 बादाम, 2 अखरोट सवेरे, 7 सोगी,
1: जी
0: पंपकिन सीड, सनफ्लावर
1: ओके
0: सीड, इन्हां नू अपनी डाइट के अंदर रेगुलर रखोगे तो कोलेस्ट्रोल थोड़ा मैनेज रहूंगा।
1: जी। सो मैम, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा, ते जिहड़े साडे स्रोते भी इस प्रोग्राम नूं सुन रहे ने ओह भी अज तों बाद है जिहड़े अपने खाण पीण दा मैनूं उम्मीद है ध्यान रखणगे। सो मैडम, एक बार फिर तो तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, शुक्रिया। तुसीं आकाशवाणी FM बठिंडा दे इस मंच ते अपना कीमती समां दित्ता,
0: शुक्रिया
1: बहुत
0: सर,
1: बहुत
0: शुक्रिया,
1: धन्नवाद मैडम, शुक्रिया।
0: मैनू मौका देने लिए शुक्रिया सर, बहुत बहुत थोड़ा,
1: थैंक यू मैडम, थैंक यू।
0: ओके सर।

0: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫ ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਐਫ ਐਮ ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾ ਹਰਸ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ 8:15 ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 8:30 ਤੇ ਰਿਲੇਅ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 8:40 ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫ ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸੋ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ
1: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
6: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरज़ू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व

0: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्यौहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। ये रैली स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान के अंतर्गत देश भर के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मांडविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि इस रैली से पूरे देश में फिटनेस का संदेश जाएगा।
2: दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
0: जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलवर्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं, विशेषकर जेन जी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और ये 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा।
3: कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: झारखंड में JPSC JSSC परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को

0: लेकर भूख हड़ताल पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगें पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना से 5 बजे के बीच शुरू हुए। समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत आगामी कड़ी में आज हम दुनिया के पहले तीनों सेनाओं के महिला नेतृत्व वाले समुद्र यात्रा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 से किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते कई स्थानों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे के दृष्टिगत मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 और मंडी जोगिंदर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर यातायात बीती रात से ही पूर्णतः बंद रखा है। 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
3: मौसम विज्ञान विभाग ने आज उड़ीसा में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बछौरे पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम से उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। आईएमडी ने अनुगुल और केंदुझर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सबसे ऊपर छाई खबरें हैं, झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी नोकझोंक, और हाल ही में फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में अस्थिरता की जांच में सामने आई कुछ नई बातें। लोकसत्ता की

0: पहली सुर्खी है, पक्ष विपक्ष का आमने सामने प्रदर्शन, संसद में हंगामा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, ऐसे भिड़े सांसद हो गई धक्का मुक्की। जनसत्ता में इस खबर का शीर्षक है, संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने, भारी हंगामा। पिछले सप्ताह फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जनसत्ता ने शीर्षक दिया है, मारिहुआना के प्रभाव में था पायलट। जबकि अमर उजाला की सुर्खी है, एयर इंडिया पायलट गांजा के नशे में था, सहयोगी उड़ा रहा था विमान। पत्र ने पायलट एसोसिएशन द्वारा रखे पक्ष को भी शीर्ष समाचार में जगह देते हुए लिखा है, टर्बुलेंस मामले में पायलट एसोसिएशन ने कहा, हाइड्रोलिक में खराबी से हुई घटना। दैनिक भास्कर ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ राज्यों में बांटे जा रहे उपहारों के मुद्दे को अपनी संपादकीय लेख का विषय बनाया है और शीर्षक दिया है, कम से कम गरीब राज्य तो रेवड़ी संस्कृति से दूर रहें।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashvani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Union Home Minister Amit Shah to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill to be tabled for consideration and passing. Prime Minister Narendra Modi to release autobiography of former President Ramnath Kovind in New Delhi today. Vice President C.P. Radhakrishnan to flag off Har Ghar Tiranga bike rally at Bharat Mandapam in a short while. Alert issued for heavy rainfall over East Rajasthan, Madhya Maharashtra, Odisha, Jharkhand and Gangetic West Bengal today. And in Commonwealth Fencing Championship, Karan Singh, Sharjin Shantimol and Tanishka Khatri clinch gold medals in Lagos, Nigeria. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 is to be tabled for consideration and passing. More from our correspondent.
3: The Kerala Alteration of Name Bill seeks to change the name of State of Kerala to Keralam in the first schedule of the Constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. The resolution stated that while the state is known as Keralam in Malayalam, its name is recorded as Kerala in the first schedule of the Constitution. Meanwhile, the Mines and Mineral Development and Regulation Amendment Bill 2026 aims to amend the Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957. The bill aims to make India's mining sector more efficient, investment-friendly and well-equipped to fulfill the country's growing demand for critical minerals. Dilashi Arzu, Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi will release the autobiography of former President Ramnath Kovind, titled Triumph of the Indian Republic, My Life, My Struggles, in New Delhi today. The Prime Minister will also address a gathering on the occasion. The autobiography offers a deeply personal account of former President Ramnath Kovind's life journey, tracing his experiences, struggles and achievements from his early years to his distinguished public life and eventual service as the 14th President of India. The book provides insights into the values, experiences and circumstances that shaped his journey and public service. Various programs are being organized across the country under Har Ghar

0: Fitch retains India growth outlook at stable. Robust growth and solid external finance fundamentals will balance fiscal and energy risks, keeps credit rating at BBB. In a major move to deepen U.S.-India bilateral space collaboration, NASA invites ISRO to Moon Base project, reports the Hindustan Times. That writes about a study. India is emerging as the most affected country. Another headline in the same paper writes, "No more plastic sachets for pan masala." Under the headline, women are second to none in India's skill-building vision. An op-ed in Hindustan Times writes about the fact that women comprise over 56% of certified candidates under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, demonstrating that aspiration for technical mastery is universal. And finally, the Pioneer carries a story under the headline, "Delhi unveils four tourism circuits, presenting the national capital as an integrated tourism experience and develop it as a destination city for a transit hub." And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Home Minister Amit Shah to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill to be tabled for consideration and passing. Prime Minister Narendra Modi to release autobiography of former President Ramnath Kovind in New Delhi today. Vice President C.P. Radhakrishnan flags off Har Ghar Tiranga bike rally at Bharat Mandapam. Alert issued for heavy rainfall over East Rajasthan, Madhya Maharashtra, Odisha, Jharkhand and Gangetic, West Bengal today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा पहला बुलेटिन दिया खास खबरां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा च केरला दा नाम बदलन संबंधी बिल 2026 पेश करेंगे। लोकसभा विच खाना आते खनिज विकास ते नियम सुध बिल 2026 पेश कीता जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली च साबका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दी आत्मकथा जारी करेंगे। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नवी दिल्ली च बूटे लगाउण दी एक व्यापक मुहिम दी करेंगे शुरुआत। मौसम विभाग ने आज पंजाब समेत होरना वख-वख सूबियां च भारी मीह पैण बारे ऑरेंज ते येलो अलर्ट जारी कीते। राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप च करण सिंह शेरजन शांतिमूल ते तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया च सोने दे तमगे जीते। ते हुण खबरां विस्थार नाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अज राज्यसभा विच केरला दा नाम बदलन संबंधी बिल 2026 पेश करनगे। लोकसभा ने कल इस बिल नूं पास कर दिता। राज्यसभा वल्लों अज राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सोध बिल 2026 ते विचार करन ते पास करन दी भी उम्मीद है। खान अते खनिज विकास नियम ते सोध बिल लोकसभा विच विचार ते पास होण लई पेश कीता जाएगा। कल वख-वख मुद्दयां उते विरोधी धिर दे हंगामे कारण संसद दे दोवां सदनां दी कारवाई दौरान एक बार फिर विघन पिया। लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सोध बिल 2026 ते राज्यसभा ने ट्रिब्यूनल सुधार बिल नूं पास कर दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली विच साबका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रैम्पन्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स जारी करेंगे। इस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकट्ठ नूं भी संबोधन करेंगे। ये आत्मकथा साबका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक बहुत ही निजी वृतांत प्रदान करती है। ये पुस्तक उन्हां कदरां कीमतां तजर्बियां ते हालात की जानकारी दिंदी है जिन्हां ने साबका राष्ट्रपति के सफर ते जनतक सेवा नूं आकार दिता। हर घर तिरंगा मुहिम तहत देश भर विच अज कई प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे ने। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने थोड़ी देर विच नवी दिल्ली तो भारत के भारत मंडपम विखे हर घर तिरंगा बाइक रैली नूं रवाना कीता। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकां नूं आजादी दिवस नूं सन्मान मान ते शान नाल मनाउण ते एक विकसित भारत लई प्रण लैण दी अपील कीती। इंस्टाग्राम ते पोस्ट कीते एक वीडियो सुनेहे च श्री मोदी ने लोकां नूं हर घर तिरंगा हर मन तिरंगा मुहिम दे हिस्से वजों हर घर ते राष्ट्रीय तिरंगा लहराउण दी अपील कीती।
3: 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें।

0: सेहत विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन ते राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल संगठन की अगुवाई हेठ करवाई जा रही है। यह मुहिम चंडीगढ़ भर विच वक् वक् गतिविधियां दे नाल दो महीनों तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने अज पंजाब च वक् वक् थावां ते भारी मीह पैण बारे येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर ते देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों च अगले दो तो तीन दिन च भारी बारिश होने की पेशीनगोई की है। विभाग ने अज पूर्वी राजस्थान समेत होरना कई थावां ते भारी तो बहुत भारी बारिश लई ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों लगातार मीह कारण आम जनजीवन प्रभावित होया। जमीन खिसकन कारण कई इलाकों आवाजाही भी प्रभावित हुई है, जबकि बिजली ते पानी की सप्लाई नाल संबंधित कई समस्यावां पैदा हो गई ने। भारत ने नाइजीरिया के लागोस च आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप च अपने प्रभावशाली तमगा जितने की लड़ी जारी रखी हुई है। करण सिंह और शेट्रन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष मुकाबलों च भारत लई सोने के तमगे जीते। भारतीय महिला तलवारबाजा ने फिर सीनियर महिला मुकाबले च शानदार प्रदर्शन करदिया तीन तमगे जीते। तनिष्का खत्री ने सोने का तमगा, खुशी दबादे ने चांदी का तमगा जितया। प्राची लोहान ने आस्ट्रेलिया के हैरिसन एस्टल नाल तीजा स्थान साझा करते हुए कांसी का तमगा अपने नाम किया। आखिर च खास खबर एक बार फिर तो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अज राज्यसभा च केरल का नाम बदलने संबंधी बिल 2026 पेश करेंगे। लोकसभा च खाना ते खनिज विकास ते नियम सोध बिल 2026 पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली च साबका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा जारी करेंगे। मौसम विभाग ने अज पंजाब समेत होना वक् वक् सूबियां च भारी मीह पैण बारे ऑरेंज ते येलो अलर्ट जारी किए। इसके नाल ही राष्ट्रीय खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। प्रदेशक खबरां दा अगला बुलेटिन तुसीं सुणोगे दुपहर 1:10 ते। नमस्कार।
1: हुणे तुसीं सुण रहे सी पंजाबी विच खबरां आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों। FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते आकाशवाणी FM बठिंडा दीआं तरंगां नाल तुहाडा साथ बणिआ होइआ है। स्टूडियो दी घड़ी अनुसार 8:40 ते 23 सैकिंड हो रहे ने। आओ रुख करदे हां प्रोग्राम महक पंजाब दी वल, जिस दा सिलसिला है कविशरी अते ढाडी वारां। आओ सुणदे हां प्रोग्राम दी पहली कविशरी।
2: प्यार करन वाले स्रोतियों, हरवंत सिंह भुल्लर अते सुखराज सिंह संदोहा दी फतेह प्रवान करो। गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लो कविता पेश कर रहे हैं। साडी एक विशरी उन्हां लोकां नूं मुखातब है जो बड्डियां दा सत्कार नहीं करदे, अपनी मनमर्जी करदे हन। ओ विज्ञान दे सुख देण वाले साधन टैलीविजन, मोबाइल, इंटरनैट, फेसबुक ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪ ਮਹਾਰਾ। ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਹਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
3: ਮਤਬਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੀ, ਬਦਲ ਗਈ ਸੱਜਣਾ ਦੁਨੀਆਂਦਾਰੀ, ਦੋ ਬਸਤਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ

0: दिल धड़कने दो, ये था फिल्म का नाम। याशिता शर्मा, शंकर महादेवन और साथियों की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा हुजूर।
0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक विविध भारती से।

मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा मगर फिर भी ना जाने क्यों

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये था फिल्म का नाम। फरहान अख्तर और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में गीत दिल चाहता है फिल्म से हमने आपको सुनवाया। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत। वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का।

0: बारी।
1: अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर की आवाजों में गीत वजीर फिल्म से अभी आपने सुना। रोचक कोहली का संगीत था, गुरप्रीत सैनी और दीपक रमोला ने इसे लिखा।
2: एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है आपकी अन

0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: आप सुन रहे प्रोग्राम चित्रलोक विविध भारती से।

0: हाफ गर्लफ्रेंड, ये था फिल्म का नाम। एश किंग और साशा तिरुपति की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे।
1: बिन पूछे मेरा नाम और पता,

शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में गीत आप पी के फिल्म से सुन रहे थे। स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा, शांतनु मोइत्रे का संगीत। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रलोक यहीं संपन्न होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है कि शोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शोधा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: वाह।
4: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में बातें उस अभिनेत्री की जिसने फिल्मी दुनिया में अपने अभिनय, अपने नृत्य और अपनी खूबसूरती से हंगामा मचा के रखा था।
1: हवा, हवा।

Chicky, lucky, chicky, chicky, lucky, chunter, lucky, chicky.

के फनकार कार्यक्रम आज समर्पित है एक खूबसूरत अभिनेत्री की याद को।

चार बरस की थी श्रीदेवी जब उन्होंने बतौर बाल कलाकार थुनैवन नामक फिल्म में काम किया था और इसके बाद बतौर बाल कलाकार उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। वो बेबी श्रीदेवी के नाम से जानी गई और केरला स्टेट का बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड मिला और आगे चलकर कई तरह के अवार्ड्स श्रीदेवी को मिले। फिर फिल्म जूली आई जिसमें श्रीदेवी ने अभिनेत्री लक्ष्मी की छोटी बहन का किरदार निभाया था। सन 1976 बतौर हीरोइन श्रीदेवी ने फिल्म संसार में कदम रखा तमिल फिल्म मुंडुरू मोडीचू के जरिए। निर्देशक थे महान निर्देशक के बालचंदर। दक्षिण भारत में श्रीदेवी का एक बड़ा ही जबरदस्त और कामयाब करियर रहा है, लेकिन यहां हम उस करियर की बातें नहीं कर रहे, हमें तो भाई हिंदी फिल्मों की बातें करनी है। तो आइए सन 1979 पर आते हैं जहां श्रीदेवी ने बतौर हीरोइन हिंदी सिनेमा के पर्दे पर अपना पहला कदम रखा। फिल्म थी सोलवा सावन।

0: इसकी 4 साल बाद श्रीदेवी ने जैसे मुंबईया फिल्म जगत में तहलका ही मचा दिया। ये फिल्म थी हिम्मत वाला। श्रीदेवी के हीरो थे जितेंद्र।
1: मैं

फिल्म हिम्मत वाला ने जबरदस्त धमाका किया। इस फिल्म के गाने बहुत चले, ये फिल्म भी बहुत चली और इसके बाद श्रीदेवी भी हिंदी सिनेमा में खूब खूब चली। आइए उस दौर की कुछ और फिल्मों की बातें की जाएं। फिल्म तोहफा।

0: तेरा फट जाए।
1: ए पंकज।
2: इसके बाद जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी ने उस दौर की कुछ नामी फिल्मों में काम किया। एक छोटी सी झलक इन गानों की, फिल्म मवाली।
1: माना माना मैं

0: फिल्म जस्टिस चौधरी।
1: मम्मा मिया प्यार की गाड़ी दे चलाओ, एक्सीलेटर और दबाओ।
2: सिंगली में मोड़ बहुत है, देखो दिल के तोड़ बहुत है, रास्ता मुड़ जाने वाला है, मेन रोड आने वाला है। स्टॉप
1: लव
2: मम्मा मिया
1: पम पम
2: मम्मा मिया
1: पम पम।
0: सन 1986 में श्रीदेवी ने फिल्म नगीना में काम किया। ये अपने दौर की एक बहुत ही कामयाब फिल्म बन गई।

मिस्टर इंडिया एक कल्ट फिल्म बन गई और इस फिल्म में श्रीदेवी के अभिनय की बहुत तारीफ हुई। इस फिल्म में श्रीदेवी ने ये गाना भी गाया था पर्दे पर, जिसे असल में गाया कविता कृष्णमूर्ति ने।

जब मिस्टर इंडिया की बात हो तो एक गाने की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सरोज खान की कोरियोग्राफी वाला गाना फिल्म मिस्टर इंडिया। काटे नहीं कटते ये दिल।

0: सन 1989 में ही श्रीदेवी ने यश चोपड़ा की एक बेहद महत्वाकांक्षी फिल्म में काम किया। इस फिल्म पर यश चोपड़ा बरसों बरस से काम कर रहे थे और आखिरकार कई हीरोइनों के नाम की संभावनाओं की खबरों के बीच ये तय हो गया कि श्रीदेवी ही हैं यश चोपड़ा की
1: चांदनी। ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी।
0: जब फिल्म चांदनी की बात हो तो भला इस गाने की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है।

सन 1992 श्रीदेवी के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण साल बन गया। इस साल श्रीदेवी अमिताभ बच्चन के साथ नजर आईं। फिल्म थी खुदा।

साल 1993, श्रीदेवी की एक ऐसी फिल्म आई जिसे बहुत लोग आज याद नहीं करते। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही थी, रूप की रानी चोरों का राजा। इसके बाद श्रीदेवी संजय दत्त के साथ धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म गुमराह में नजर आई। निर्देशक थे महेश भट्ट। सन 1994 में श्रीदेवी अनिल कपूर के साथ फिल्म लाडला में दिखी। सन 1997 फिल्म आई जुदाई। इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ अनिल कपूर और उर्मिला मातोंडकर थे।

0: इसके बाद श्रीदेवी ने जाने माने प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी रचा ली और वो फिल्म संसार से लंबे समय तक दूर हो गईं। लंबे समय तक फिल्म संसार से दूर रहने के बाद श्रीदेवी ने रुपहले पर्दे पर वापसी करने का मन बनाया। साल 2011 में आई गौरी शिंदे की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश।
1: सॉरी, माय वाइफ्स इंग्लिश इज नॉट वेरी गुड, सो
2: मेरा केविन, दिस मैरिज इज अ ब्यूटीफुल थिंग, इट इज द मोस्ट

0: श्रीदेवी की आखिरी फिल्म बन गई फिल्म मॉम, और इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की गई। लेकिन जब तक ये घोषणा आई, श्रीदेवी इस फानी दुनिया से अलविदा कह चुकी थी।
1: खामोशी के

24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी का निधन हो गया। जब राष्ट्रीय पुरस्कार बांटे गए तो अपनी मां की ओर से श्रीदेवी की बेटियों ने और उनके पति बोनी कपूर ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया।

0: ये था अभिनेत्री श्रीदेवी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

जानी मानी अभिनेत्री श्रीदेवी अपने चाहने वालों की याद में हमेशा रहेंगी और बनी रहेंगी वैसी ही शोख, चंचल और खूबसूरत अदाकारा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। यह आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है।
1: कोविंद जी का विनम्र व्यक्तित्व, उनकी सादगी ऐसे ही कायम रहे। प्रधानमंत्री के तौर पर मैं राष्ट्रपति भवन में उनसे मिलने जाता था। प्रोटोकॉल के हिसाब से जो बातें नहीं हो सकती है वो बातें वो करते थे। वो प्रधानमंत्री को छोड़ने के लिए गाड़ी के दरवाजे तक आते थे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी से रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी उन्हीं के शब्दों में जानने और उनके लेखन और अनुभवों को पढ़ने का आग्रह किया। इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक साधन है। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक मसौदा विधेयक तैयार किया जा चुका है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगे पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर कहा है कि आज के युवाओं के सपने कल की भारत की नींव है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा आज देश की ताकत है। उन्होंने इस दिन को देश के युवाओं की क्षमता और राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान का जश्न मनाने का आग्रह किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज इसरो के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्होंने भारत के लिए जो महत्वाकांक्षी सपना देखा था वो आज साकार हुआ है। श्री सिंह ने डॉक्टर साराभाई को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापकों में से एक बताया।

0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 381 अंक गिरकर 77,773 पर, जबकि निफ्टी 112 अंक गिरकर 24,360 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: वो सब गाना इनका उनका वही है माला वही है मन का
2: मस्त मलंग वो अपनी धुन का
1: अंतर मंतर अंतर ज्ञानी है सर्वज्ञ स्वाभिमानी जिनके है महाविनाशी
2: ओंकार है इसी की वाणी
1: किसी की वाणी किसी की वाणी भांग दूरा बेल का पत्ता तीनों लोग इसी की सत्ता विष पी कर भी अडिग अमर है महादेव हर हर है जपता जपता वही शून्य है वही इकाई वही शून्य है वही इकाई वही शून्य है वही इकाई जिसके भीतर वसा शिवाय

आंख मूंद कर देख रहा है, साथ समय के खेल रहा है। महादेव महा एकाकी, जिसके लिए जगत है झांकी। जगह में गंगा चांद मुकुट है, सौम्य कभी कभी बड़ा विकट है। आंख से जन्मा है कैलाशी शक्ति, जिसकी तरस की प्यासी प्यासी। राम भी उसका, रावण उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका। तांडव है और ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। आंख तीसरी जब ये खोले, हिले धरा और स्वर्ग भी डोले। गूंज उठे हर दिशा क्षितिज में, नाद उसी का बम बम बोले। वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर वसा शिवाय।

विनाश जा जा के नाश जा कर विनाश जा जा के नाश जा कर विनाश जा जा के नाश जा कर विनाश जा जा के नाश जा कर विनाश जा जा के नाश जा कर विनाश जा जा के नाश जा कर विनाश जा जा के नाश जा कर विनाश जा जा के नाश जा कर विनाश जा जा के नाश जा कर विनाश जा जा के नाश जा कर विनाश जा जा के नाश जा कर विनाश जा जा के नाश जा कर विनाश जा जा के नाश जा कर विनाश जा जा के नाश जा कर विनाश जा जा के नाश जा कर विनाश जा जा के नाश जा कर विनाश जा जा के नाश जा कर विनाश जा जा के नाश जा कर विनाश जा जा के नाश जा कर विनाश जा जा के नाश जा कर विनाश जा जा के नाश जा कर विनाश जा जा के नाश जा कर विनाश जा जा के नाश जा कर विनाश जा जा के नाश जा कर विनाश जा जा के नाश जा कर विनाश जा जा के नाश जा कर विनाश जा जा के नाश जा कर विनाश जा जा के नाश जा कर विनाश जा जा के नाश

जी हाँ, सावन का महीना चल रहा है और बहुत सारे सावन के जो जुड़े हुए जो गीत संगीत होते हैं ना, वो हमारे जहन में अपने आप ही आ जाते हैं और मन करता है कि हाँ, प्रोग्राम की जो शुरुआत है ना, वो उसी के साथ की जाए। तो आज बॉलीवुड ट्रेल्स में आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी रॉकिंग रश्मि, और लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत जबरदस्त खबरें। साथ में होगा एक नन्ना मुन्ना प्यारा सा सवाल हमेशा की तरह, जिसको सुनकर, जिसको जिसका सही जवाब बताकर आप बन जाएंगे हमारे बॉलीवुड सरताज। तो बस रहिए हमारे साथ कुछ यूं ही। और वैसे भी दोस्तों, इस वक्त इंडिपेंडेंस डे का हफ्ता चल रहा है और जाहिर सी बात है ना, अपने मन में, तन में, अंदर तक कहीं ना कहीं हमारी जो आ, आ, क्या ये कहें कि हमारी जो अंदर की पूरी भावना है ना, वो इस वक्त

पेट्रियोटिक हो चुकी है। और इस समय यदि हम चाहें कि कोई आपको एक ऐसा गीत सुनाए जो आपको अपने देश से जोड़ दे, अपने देश की मिट्टी से जोड़ दे और याद दिला दे कि भाई हमारा देश जो है ना अपने आप में इतना अनूठा है कि एकता में एकता का एक अनूठा, एक अपने आप में इकलौता उदाहरण है। तो चलते हैं, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को और उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगी बहुत जबरदस्त ट्रैक्स भी और साथ में बॉलीवुड की चटपटी खबरें भी।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: अरे अंजलि, अब क्या तुम मेरठ से नहीं आ रही? रोज तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
3: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
2: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
5: एक बार फिर से बॉलीवुड ट्रेल्स में आप सभी का स्वागत। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी रॉकिंग रश्मि। दोस्तों, बहुत ज्यादा जैसे कि हमने बताया कि देश हमारा रंगीला है, लेकिन साथ साथ जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री है ना, वो भी रंगीली है। और यहाँ अब ऐसा हो गया है कि केवल आपको जो हमारे बॉलीवुड के स्टार्स है ना, उन्हीं के साथ फिल्में देखने को नहीं मिलती, बल्कि हमारी जो पैन इंडिया फिल्म है ना, वो भी यहाँ पर काफी पसंद की जाती है। और ऐसी ही एक पैन इंडिया जो फिल्म है, उसका इंतजार हो रहा है अब लोगों को काफी शिद्दत से। फिल्म कौन सी है? यह है टॉक्सिक। जी हाँ, यश की टॉक्सिक का इंतजार है जबरदस्त तरीके से। और खास बात यह है कि इस फिल्म में नयनतारा ने एक खास रोल निभाया है। और खास बात यह भी है कि नयनतारा ने इस फिल्म के लिए बहुत सारे अपने जो नियम है ना, वो तोड़े हैं। वो जनरली ये चाहती हैं कि जब भी वो कोई फिल्म करें तो उसमें बहुत सारे स्टार्स ना हो, कहते उसके साथ ना कुछ मजा सा नहीं आता, बहुत थोड़ा सा मैसी हो जाता है। तो इसलिए वो कोशिश करती है कि जब भी कोई ऐसी फिल्म हो जिसमें बहुत सारे कलाकार हों तो वो उसे ना करें। लेकिन जब इसकी कहानी उन्होंने सुनी तो उन्होंने फौरन हाँ कर दी। साथ साथ इसमें खास बात यह भी है कि जब भी फिल्म का कोई प्रमोशन इवेंट होता है ना, तो वो उसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहती, कहती है मैं इन चीजों में ना उतनी अच्छी नहीं हूं और इसी वजह से मैं इससे दूर रहती हूं। लेकिन जब इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ तो यश ने उन्हें फोन किया और इसी वजह से नयनतारा इस फिल्म के प्रमोशन लॉन्च पर आई, ट्रेलर लॉन्च पर आई। तो देखिए ना, जब इतनी खासी इतनी बड़ी एक्ट्रेस नयनतारा फिल्म के प्रमोशन के लिए आ सकती हैं, अपनी जिंदगी के बनाए हुए कुछ नियम तोड़ सकती हैं, तो थोड़ा सा तो डेफिनेटली उस फिल्म में कुछ खास होगा। तो चलिए, उस फिल्म का हम इंतजार करेंगे जब ये फिल्म रिलीज होगी। लेकिन फिलहाल हम आपको इंतजार नहीं करा रहे, इसी फिल्म का एक खास ट्रैक, एक जबरदस्त ट्रैक जिसने वाकई में इस वक्त इंडस्ट्री में तबाही मचाई हुई है, सुना रहे हैं आपको हमारे वन एंड ओनली प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स में।

जी हाँ बिल्कुल, ये जो ट्रैक है जिसको अभी अभी आपने सुना ना, वो भी डेफिनेटली हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे एक खास खबर। 14 अगस्त यानी कि अब से सीधे 2 दिन के बाद दो जबरदस्त मतलब मोस्ट अवेटिंग फिल्म्स हम कह सकते हैं कि वो रिलीज होने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आवारापन 2 और बंटवारा 1947 की। हिंदी सिनेमा की वो दो फिल्में जिसमें इमरान हाशमी का इंतजार है लोगों को और साथ में है सनी देओल का इंतजार, और ये दोनों ही मूवीज रिलीज हो रही है 14 अगस्त को। और जैसे कि आजकल सिनेमा जगत में एडवांस बुकिंग का चलन स्टार्ट हो गया है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का भी ऑलरेडी एडवांस बुकिंग का सिस्टम स्टार्ट हो गया था। लेकिन खबर ये मिली है कि इमरान हाशमी स्टारर आवारापन 2 को काफी अच्छा रिस्पांस मिला है और इसकी बुकिंग जो है बंटवारा 1947 से ज्यादा हो गई है। और शायद यही वजह है कि थोड़ा सा सनी देओल और राजकुमार संतोषी जो है ना, थोड़ा सा टेंशन में आ गए हैं कि क्या आवारापन 2 जो है वो बंटवारा 1947 से ज्यादा लाइमलाइट ले जाएगी, ऐसा है क्या? चलिए, ऐसा यदि है भी तो मुझे नहीं लगता कि सनी देओल को किसी तरह का खतरा है, क्योंकि जब इस तरह की फिल्में आती हैं ना, तो डेफिनेटली लोगों को काफी इंतजार उनका रहता है और इसी वजह से उन्हें पसंद भी किया जाता है और साथ साथ लोगों को के दिलों में उनको देखने की ख्वाहिश भी ज्यादा होती है। फिलहाल मुझे ख्वाहिश है आपको ये ट्रैक सुनाने की, तो चलिए ट्रैक सुनते हैं और वापस आते हैं बॉलीवुड ट्रेल्स में एक खास सवाल के साथ, जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं हमारी बॉलीवुड सरताज।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
3: अरे सर, फिक्र मत कीजिए।

0: मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
1: इम्पॉसिबल
0: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। फार्म टू सिटी, फार्म टू सिटी, फार्म
4: एक बार फिर से बॉलीवुड रील्स में आप सभी का स्वागत। आपके साथ हूँ कौन मैं है? जी हाँ, आपकी अपनी रॉकिंग रश्मि। दोस्तों, बहुत सी मतलब हमें एक्ट्रेसेस इतनी पसंद आती हैं कि हम चाहते हुए भी ना, मतलब ना चाहते हुए भी समझ लीजिए कि उन्हें हम पसंद करने लगते हैं। और ऐसी ही एक एक्ट्रेस है सारा अली खान। सब जानते हैं कि अमृता सिंह और सैफ अली खान की सुपुत्री हैं और फिल्मों में काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया है। एक के बाद एक कई फिल्में दी, कुछ अच्छी गईं, कुछ उतनी अच्छी नहीं गई, लेकिन उसके बावजूद इंडस्ट्री में उन्हें अच्छा खासा पसंद किया जाता है। तो आज उन्हीं से जुड़ा एक सवाल किस लिए पूछ रही हूँ इसका जवाब दूंगी मैं आपको बाद में, लेकिन सवाल उनसे जुड़ा इसलिए है, उसका जवाब बाद में दूंगी, लेकिन सवाल क्या है ये आप सुन लीजिए। 9868107070 पर आपको उस सवाल का सही जवाब लिखकर भेजना है, अपने नाम, अपने फोन नंबर और अपने शहर के नाम के साथ हमारे पास। तो जल्दी से सवाल सुन लीजिए, क्या है आज के बॉलीवुड सरताज का क्वेश्चन। सारा अली खान की डेब्यू फिल्म का नाम क्या था? जी हाँ, आपको ये बताना है सारा अली खान की डेब्यू फिल्म कौन सी थी। आप जल्दी से लिखकर उसे भेज दीजिए हमारे पास, अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ 9868107070 पर।

0: बॉलीवुड ट्रेल्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और आज आप सुन रहे हैं क्या, बहुत सारी नई नई खबरें। और मैंने आपसे पूछा है बहुत ही छोटा सा नन्ना मुन्ना सा सवाल, और वो ये है कि सारा अली खान ने किस फिल्म के साथ बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी। आपको बताना है उस फिल्म का नाम, जल्दी से लिखकर भेज दीजिए उसे हमारे पास। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर, और इस पर अपने नाम अपने शहर के नाम के साथ जल्दी से लिखकर भेज दीजिए इसका सही सही आंसर।
1: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
2: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
1: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
3: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
4: इग्नोर नहीं, याद करो।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
7: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और

0: एक्सक्लूसिव्स ओटीटी पर।
1: जी हाँ, और फिलहाल एफएम रेनबो 102.6 पर आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त, लेकर आई हूँ प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स। और अब एक ऐसी खबर जो आपको अंदर तक हिला देगी, वो ये कि जल्द ही रिलीज होने वाली थी एक फिल्म 11 सितंबर को। फिल्म का नाम था उड़ता तीर। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की अवेटेड फिल्म का इंतजार वाकई में सभी को था, मुझे भी था, और डेफिनेटली जो आयुष्मान खुराना के चाहने वाले हैं ना, उनके फैंस हैं, उनको भी इस फिल्म का अच्छी तरह से और काफी शिद्दत से इंतजार था। लेकिन दोस्तों, करण जौहर के इस प्रोडक्शन वाली फिल्म की ना रिलीज डेट अब पोस्टपोन हो गई है। अब आप वो कहेंगे ऐसा क्यों भाई, इस फिल्म में ऐसा क्या था? भाई फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था, फिल्म तो उम्मीद से भी बेहतर हो सकती है। जाहिर सी बात है, करण जौहर प्रोडक्शन की है और साथ में आयुष्मान खुराना का नाम उस फिल्म के साथ जुड़ा है, तो डेफिनेटली अच्छी ही होगी। लेकिन खास बात यह है कि 11 सितंबर को यह फिल्म रिलीज होनी थी किसके साथ? अक्षय कुमार की हैवान के साथ। और ऑब्वियस ही बात है, जब अक्षय कुमार अपनी कोई फिल्म लेकर आए, और जैसे कि बॉलीवुड में आजकल ट्रेंड चल गया है, यदि कोई दो बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली होती है ना एक ही दिन, तो कोई ना कोई फिल्म प्रोडक्शन जो होता है या जो फिल्म मेकर्स होते हैं ना, वो उससे पोस्टपोन कर देते हैं या प्रीपोन कर देते हैं। तो इस बार ये जो ट्रेंड है, ये आयुष्मान खुराना की फिल्म उड़ता तीर के साथ फॉलो किया गया है। 11 सितंबर को अब ये फिल्म रिलीज ना होकर 9 अक्टूबर 2026 को दुनिया भर के थिएटर में दिखाई देगी। जी हाँ, आयुष्मान की हाई ऑक्टेन फैमिली एंटरटेनर और स्पाई कॉमेडी फिल्म रहेगी, जिसमें इनके साथ होंगी सारा अली खान। लेकिन हाँ, 11 सितंबर को प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी हुई अक्षय कुमार और सैफ अली खान स्टारर फिल्म हैवान रिलीज होने वाली है। तो जाहिर सी बात है, अब इन दोनों फिल्मों का, हैवान और उड़ता तीर का, क्लैश बिल्कुल नहीं होगा और हमें आराम से फिल्में देखने को मिलेंगी ये दोनों। फिलहाल मैं आपको वो गाना सुना रही हूँ जिसका म्यूजिक आप ऑलरेडी दो बार सुन चुके हैं, और मैंने कोशिश की कि आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट दे दूं कि हाँ वाकई में भैया ये गीत मैं आपको सुनाने वाली हूँ। एक पुराने सॉन्ग का रिमिक्स है, बहुत उस समय भी काफी चला था ये गाना, और बाहर आने तक फिल्म का ट्रैक था, लेकिन इस बार ये पति पत्नी और वो दो में आपको सुनाई दिया। चलिए सुनते हैं इस गाने को, एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं और वापस आते हैं एक बार फिर से हमारे और आपके अपने प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स में।

0: एनसीआरईपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: जी हाँ, और अब बात है कार्तिक आर्यन की। भाई, कार्तिक आर्यन ने कबीर खान की फिल्म चंदू चैंपियंस में अपने करियर की सबसे शानदार परफॉर्मेंस दी थी, ऐसा माना जाता है। और फिल्म में उन्होंने पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मुरली कांत पेटकर का किरदार निभाया था। और अब खबर ये है कि कार्तिक आर्यन और कबीर खान ने एक बार फिर से हाथ मिला लिया है और दोनों एक बार फिर से एक और स्पोर्ट्स ड्रामा के लिए रीयूनाइट हुए हैं। ये जो फिल्म है किक बॉक्सर तजामुल इस्लाम की जिंदगी पर बेस्ड होगी। और कहा यह जा रहा है कि इस बायोपिक में कार्तिक आर्यन किक बॉक्सर तजामुल इस्लाम के कोच का किरदार निभाते नजर आ सकते हैं। और कबीर खान ने इस फिल्म का शेड्यूल भी स्टार्ट कर दिया है। तो भाई, अब देखना ये है कि क्या वाकई में इस बायोपिक में कार्तिक आर्यन नजर आएंगे, और नजर आएंगे तो क्या इस बार भी उन्हें उस फिल्म के लिए अवार्ड मिलेगा। फिलहाल हमें इंतजार रहेगा इसकी आगे की खबरों का। लेकिन आपके लिए एक और प्यारा सा गीत लेकर आई हूं बॉलीवुड ट्रेल्स में। तब तक आपने यदि अभी तक मेरा सवाल नहीं सुना है तो सुन लीजिए, बहुत ही आसान सा सवाल है। सारा अली खान की डेब्यू फिल्म का नाम आपको लिखकर भेजना है 9868107070 पर।

आज बॉलीवुड रील्स में हम मना रहे हैं बर्थडे एक ऐसी अभिनेत्री का जिनके जो पेरेंट्स हैं यानी कि अमृता सिंह और सैफ अली खान दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे खासे एस्टेब्लिश कलाकार हैं और साथ साथ इस अभिनेत्री ने भी अपने आप का एक नाम बना लिया है इंडस्ट्री में और उनके नाम के साथ डेफिनेटली उन्हें अच्छी खासी पहचान मिली हुई है। जी हम बात कर रही हूँ सारा अली खान की और यही वजह थी दोस्तों की आज मैंने उनसे जुड़ा आपसे सवाल पूछा। तो वही बहुत ही आसान सा सवाल मैंने आपसे पूछा है, उनकी डेब्यू फिल्म का नाम आपको बताना है लेकिन साथ साथ आज उन्हें ढेर सारी विशेस भी देनी है क्योंकि आज सारा अली खान मना रही हैं अपना बर्थडे। 2018 में उन्होंने फिल्म केदारनाथ के साथ अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत की थी और उसके बाद रणवीर सिंह के साथ सिम्बा में भी काम किया और एक के बाद एक कई फिल्में दी और रिसेंटली पति पत्नी और वो दो में वो नजर आई आयुष्मान खुराना के साथ में और उनके साथ में थी शर्वरी वाघ भी और काफी पसंद किया गया उसने उन्हें इस फिल्म के द्वारा भी। लेकिन साथ साथ दोस्तों आज एक और अभिनेत्री हैं जिनका बर्थडे हम मना रहे हैं वो है

आयशा, जिन्होंने अजय देवगन की फिल्म में शिवाय के साथ फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। तो आज इन दोनों ही एक्ट्रेसेस को हमारे एफएम रेनबो की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वो ऐसे ही खुश रहें, मुस्कुराती रहें और हमें ढेर सारी अच्छी अच्छी फिल्में देती रहें। और अब जैसे कि मैंने आपसे सवाल पूछा था कि बहुत आसान सा सवाल था, सारा अली खान की डेब्यू फिल्म का नाम क्या था, आपको वो बताना है। तो बहुत सारे लिसनर्स के बिल्कुल सही मैसेजेस आए हैं। विनीत कुमार ने बदायूं उत्तर प्रदेश से लिखा है, सलीम मलिक ने मेरठ से बताया है, पंकज ने अमरावती से, राजकुमार सेस के संतानी ने अकोला महाराष्ट्र से बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसके अलावा यह है प्रवीण चौहान खगनौर खरगोन मध्य प्रदेश से, इसका रोहित श्रीवास्तव है दिल्ली से, इसके अलावा सुनीता शर्मा शालीमार बाग से, और ये है निकिता, कहाँ से इन्होंने लिखा है, इन्होंने पुणे से सही जवाब लिखकर भेजा। और हमारे बहुत सारे

और ये है निकिता। कहाँ से इन्होंने लिखा है? इन्होंने पुणे से सही जवाब लिखकर भेजा। और हमारे बहुत सारे जो लिसनर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, एक और है सुरोजीत ग्रेटर नोएडा वेस्ट से, उनका बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा ईशा ने धर्मशाला से लिखा है, और ये कौन है, सुखलाल बाल बाला लिख रहे हैं कहाँ से, वेस्ट बंगाल से। और वो सभी लिसनर्स जिन्होंने हमें बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा है, उनका बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया हमारी ओर से। और आप सभी के लिए इसी फिल्म का ये ट्रैक सिर्फ और सिर्फ एफएम रेनो 102.6 पर। और इसी के साथ रश्मि को दीजिए इजाजत, 1 बजे आपसे फिर मुलाकात करूंगी, लेकर आऊंगी रेनबो हेल्पलाइन एक खास विषय के साथ।

0: चर्चा के लिए सदन में उपस्थित हों। उन्होंने कहा कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने देने की अपील की। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार विपक्ष की मांग पर सहमत हो गई है और गृहमंत्री अमित शाह बयान देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष से सहमति बनाने तथा संवाद के जरिए आगे बढ़ने की अपील की। लगातार हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर हंगामा किया, जिस वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी से रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी उन्हीं के शब्दों में जानने और उनके लेखन और अनुभवों को पढ़ने का आग्रह किया।
1: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक जरिया भी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 संस्थागत पारदर्शी और जवाबदेह न्यायाधिकरण प्रशासन की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को एक मजबूत न्यायाधिकरण प्रणाली के केंद्र में रखता है। एक अंग्रेजी दैनिक के लिखे लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के मूल अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन किए बिना उनकी शासन संरचना को मजबूत करने का प्रयास करता है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सेवानिवृत्त आरआरपीएस डॉक्टर भूमा वीजी को मॉरिशस के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन एआईपीएसआई के कुलपति पद के लिए चुना गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि एआईपीएसआई मॉरिशस का पूर्व सिविल सर्विस कॉलेज है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने मार्च 2025 में संयुक्त रूप से किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगे पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंकफील्ड कप के दूसरे दौर में जावखोरिन सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा 2 मैचों में 1.5 अंक पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. Both the Houses of Parliament have been adjourned till 2 p.m. following opposition uproar over several issues.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि विपक्ष आज

निकला है प्रोग्राम लेट्स रॉक एंड डांस था। प्रोग्राम लेट्स रॉक एंड डांस लेके हाजिर हाँ मैं दीपा छाबड़ा ते मेरे वालों सारे ही श्रोतियां नूं प्यार ते सतिकार भरी नमस्कार। दोस्तों एक जरूरी जानकारी तुहाडे नाल सांझी करना चाहूँगी कि अज लेट्स रॉक एंड डांस तुसी सुनोगे 12:20 तक ते 12:20 ते असी तुहाडे लई लैके आवांगे प्रोग्राम घर परिवार जिस तहत अज दा विषय होएगा सभ्याचार ते नैतिक कदरां कीमतां ते मेहमान होणगे प्रोफेसर मैडम गुरजीत कौर मेज़बान होणगे गुरदीप कौर। कहिंदे एक कप चाह का बहाना कर लेना चाहिए है। एक कप चाह का बहाना कर लेना चाहिए है। फासलिया नू फुरसत नाल भर लेना चाहिए है। बड़ी बोझ जी है हुणे जिंदगी सजना नाल दिल हौला कर लेना चाहिए है। सजना नाल दिल हौला कर लेना चाहिए है। ते तुहाडा सज्जन मित्र है जी आकाशवाणी FM बठिंडा जिहड़ा कि हमेशा तुहाडे हर दुख सुख दे विच तुहाडे नाल रहिंदा ते तुसी उस दे नाल ही अपने दुख सुख सांझे भी करने ते सुनते रहना आकाशवाणी FM बठिंडा। तो फिलहाल प्रोग्राम केड़ा है जी? प्रोग्राम है जी लेट्स रॉक एंड डांस ते मैं हाँ थोड़े नाल दीपा छाबड़ा ते कर लेने जी प्रोग्राम दा आगाज इस खूबसूरत जी गीत दे नाल।

मुद्दत होगी मेहरमाना मुख विखाया, मुद्दत होगी मेहरमाना मुख विखाया, नित निमाणी जिंद नू तू लारा लाया, बागी कोयला बोल दिया ना कांकुर लाया, सौन महीना आ गया माहीना आया, अल्फा खां दमां दे आ लो भी आवे।

नमस्कार, ए आकाशवाणी ए, हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम दी भावना ने भारत दे आजादी संग्राम नूं प्रेरित कीता सी अते अज वी देश दी पछाण नूं मजबूत कर रही है। उन्होंने कल सभ्याचार मंत्रालय वालों राष्ट्रीय गीत दे 150 साल पूरे होने के मौके पर कराई गई हर घर तिरंगा बाइक रैली च हिस्सा लैण वालिआं नूं संबोधन करदिआं कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम दे शब्दां ने देशभगति नूं जगाया अते इलाकिआं भाषावां धर्मां ते पिछोकड़ां दे लोकां नूं इकजुट कीता। बरतानिया के डिप्टी हाई कमिश्नर एल्बा स्मैरिकलियो ने उत्थे रहिंदे पंजाबियों दीआं वख-वख चिंतावां ते पंजाब दे एनआरआई मामलों बारे मंत्री डॉ. रवजोत सिंह नाल चर्चा की थी। इस चर्चा विच बरतानिया च रहिंदे पंजाबियों दे हितां नूं प्रभावित करन वाले मुद्दे शामिल सन। स्मैरिकलियो अते डॉ. रवजोत सिंह ने कल चंडीगढ़ विखे अपनी मुलाकात दौरान प्रवासी पंजाबियों नाल संबंधित मामलों ते आपसी संचार ते सहयोग नूं होर

0: देखते हैं कि अगली कॉल किसने मिलाई है। हेलो हेलो,
1: नमस्कार मैडम जी। निरंतर
0: हाँ जी नमस्कार जी, कौन गल कर रहे हो
1: बाल बोलता जी, बठिंडे तो जी। धन्यवाद
0: जी? तो प्रोग्राम दे विच बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी।
0: ते अजे केड़ा गीत सुनोगे तुसी?
1: हम आपके कौन ना कोई मर्जी ला दी।
0: ठीक है जी, तुहाडी फरमाइश जरूर पूरी कर रहे हैं ते सुनदे हैं तुहाडी पसंद दा गीत। ते प्रोग्राम दे
1: धन्यवाद
0: विच कॉल करन दे लई बहुत बहुत धन्नवाद जी।
1: मैडम जी।
0: जी

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया, इस राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखेल सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष

0: सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही।
1: पक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी भी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो जवाबदेही चाहता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। इस समय दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगे स्वीकार किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के साथ संवाद करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी देर रात आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आमरण अनशन कर रहे छात्रों से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि छात्रों ने अनशन जारी रखने की बात कही और बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी तय करेगी। इस बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। परीक्षा विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वो अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
3: हमें भविष्य में गोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है।
3: कोविंद जी ने ये काम हम सबके लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया है। संशोधित दरें कल आधी रात से लागू हो गई हैं। इससे प्राप्त राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने इस फैसले को जनविरोधी बताया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की प्रगति को गति मिल सके।

0: के नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि प्रौद्योगिकी और व्यापार भारत की विकास यात्रा के दो प्रमुख आधार हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों तथा कारीगरों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए नवाचार, बाजार उन्मुख डिजाइन और टिकाऊ उत्पादन पर बल दिया। नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले वार्षिक सम्मेलन सूत्र 2026 में श्री सिंह ने ये बात कही। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
1: इस वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्रगीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्रध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है। इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे को घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय और राष्ट्रध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कही।
2: इन तिरंगा यात्रा, बाइक एंड साइकिल रैली, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड कंसर्ट्स, ईच एक्टिविटी हैज अ डिफरेंट फॉर्म बट द सेंटीमेंट बिहाइंड देम इज कॉमन। द नेशनल फ्लैग इज द सिंबल इन विच एवरी सिटीजन कैन फाइंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान युवा छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति का रंग देखने को मिला। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तिरंगा यात्राओं से लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
3: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक चल रहे इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में तिरंगा यात्रा के साथ की। इसके बाद से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं, बाइक और साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेले, प्रदर्शनियां, मानव श्रृंखला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी रंगोली, चित्रकला, निबंध और देशभक्ति गीतों जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की खास अपील की गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने ये विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में ये आंकड़ा लगभग 49% था। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के एक चौल में भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
4: मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार यह घटना

0: नगर स्थित गौसिया चौल में हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पहाड़ी का एक हिस्सा चौल पर गिर गया, जिससे 2 से 3 मकान मलबे की चपेट में आ गए। घटना के बाद मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त पूर्वी उपनगर डॉक्टर अविनाश ढाकने ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जारी बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। प्रार्थना के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से मैं स्वीटी जैन।
1: वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कल तक बिजली चमकने और तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा तट के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उत्तरी और तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे उड़ीसा में बारिश बढ़ गई है। भद्रक, केंद्रापड़ा और जगतसिंहपुर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है। 25 अन्य जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है। IMD को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उड़ीसा में व्यापक बारिश होगी और आज व कल कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। खेलों में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। 95 चालों तक चले इस मैच में प्रज्ञानंदा ने शुरुआत से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के 2 मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। अभी अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हुणे तुसी सुन रहे सी हिंदी विच खबरां दा बुलेटिन आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तों। FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज ते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रसारण। स्टूडियो दी घड़ी ते समा होया है 2:30 ते 30 सेकंड ते हुण समा है प्रोग्राम सुरीली दुपहर दा।

0: मुद्दतों बाद उसने पूछा कि कहाँ रहते हो। मुद्दतों बाद उसने पूछा कि कहाँ रहते हो, तो हमने भी मुस्कुरा कर कह दिया कि तुम्हारी तलाश में। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, ते वेरी गुड आफ्टरनून दे नाल हाजिर हो गई हां जी। मैं तुहाडी रेडियो दोस्त दीपा चापड़ा। प्रोग्राम का नाम है सुरीली दोपहर, ते अज तुहाडी दोपहर नू सुरीला असी बनाउणा है। मैं ते मेरे नाल ने
1: अमनदीप कौर।
0: अमन, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा।
1: जी मैम।
0: ते अमन, श्रोतियां नू दस दिओ कि अज दा जिहड़ा सुरीली दोपहर है ओ किस ते आधारित है।
1: जी, अज का प्रोग्राम तुहाडे खतां ते वट्सएप सुनेहां ते उहदा आधारित है, ते सानू भी बेसब्री नाल उड़ीक रहिंदी है तुहाडे खतां ते वट्सएप सुनेहां दी। ते प्रोग्राम दे विच शामिल होण लई तुसीं सानू खत लिखणे ने ते वट्सएप सुनेहे भेजणे ने 7710373146 नंबर ते।
0: बहुत वधिया अमन, ते चलो पहलां आपां फिर जिहड़ा अपनी पसंद दा आपां गीत कढ़िया होया, ते श्रोतियां दी वी पसंद इस दे विच रली मिली है, ते ओह गीत नाल असीं प्रोग्राम दा

आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्यारे श्रोतियो, मिति 12 अगस्त दिन बुधवार नू शाम 5:30 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम अखर बोलदे ने। ते साडा इस वार दा विशा होएगा जिंदगी दी सार्थकता।

0: तबीयत जो खराब हो जाती है ये जरा संभल जाती है।
1: ये संभल जाती है। और जो लोग रोज अखबार पढ़ते हैं ना दीपा, उन्हें मालूम होता है कि भाई अभी बहुत जगह पे इस तरह की बीमारियां फैली हुई है, तो
0: जी
1: पानी उबाल कर पीना चाहिए या अपना ध्यान रखना चाहिए। यानी बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, बहुत सारी योजनाएं होती हैं, तो हमें रोज अखबार पढ़ते रहना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा। और ऐसे ही देखो ना, ये मौसम ऐसा है कि यहाँ पे अलग अलग व्यंजन खाने का और बनाने का बड़ा मन करता है। अच्छा चलिए सखियाँ, बनाने का भले मन नहीं करता होगा लेकिन खाने का तो करता होगा
1: मेरा तो मन करता
0: ना।
1: है।
0: बिल्कुल, तो वैरायटी सबको चाहिए, एक विविधता होनी चाहिए, ना
1: और
0: सिर्फ अपने जीवन में खाने में भी।
1: हाँ, और है ना, वही वही तरह के जब हम खाने खाते हैं ना, तो बच्चे क्या, बड़े बूढ़े सारे लोग ना परेशान हो जाते हैं कि अरे वही बना लिया। तो ओट्स जो होते हैं ना, प्रोटीन से भरे होते हैं, तो उसके व्यंजन, बहुत सारे व्यंजन हमारी सखियों ने, हमारे श्रोताओं ने लिखकर भी भेजे हैं।
0: बिल्कुल।
1: किसी ने डोसे का लिखा है, किसी ने उपमा लिखा है, तो किसी ने खीर लिखा है। तो आप भी लिखकर भेजिए कि आपके घर में ओट्स के व्यंजन बनते हैं, और नहीं बनते तो क्या बनने चाहिए, है ना।
0: बिल्कुल, और देखिए थोड़ी मेहनत तो लगेगी लेकिन मेहनत का फिर फल भी तो बहुत मीठा होता
1: बहुत
0: है।
1: मीठा होता है।
0: और जब सारे खुश हो जाएंगे और उस मेहनत का जब रंग निखर के आएगा तो फिर देखिए न सिर्फ हर दिन हमारा जीवन भी सवर जाएगा, और यही शब्द है हमारा आज का।
1: मेहनत। तो आज का है शब्द हमारा, विचार आपके, इसमें मेहनत है। यानी किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, बिना मेहनत के हमें बहुत सफलता नहीं मिल सकती।
0: बिल्कुल, और आजकल की जो हमारी बेटियां हैं उन्हें लगता है साड़ी पहनने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन जो अनुभवी महिलाएं हैं वो कहती हैं तुम जितनी देर में ड्रेस पहनोगे हम उतनी देर में साड़ी पहन
1: हम
0: लेंगे।
1: चट से पहन लेंगे।
0: तो साड़ियों का अपना एक सुंदर संसार है, और एक महिला जितनी खूबसूरत साड़ी में लगती है किसी अन्य परिवेश में, परिधान में शायद कम लगती है। ये आपको क्या लगता है आप जरूर बताइएगा सखियां, कि साड़ी पहनना आसान है या ड्रेस पहनना आसान है, और अगर आसान ड्रेस है तो खूबसूरत किसमें ज्यादा दिखते हैं।
1: और श्रोता भाई भी बताएं कि महिलाएं किस ड्रेस में, यानी किस परिधान में ज्यादा सुंदर लगती है।
0: जी
1: तो खंडुआ साड़ी ओडिशा के बारे में हम जानकारी देंगे, और हमारी बहुत सारी श्रोताओं ने, हमारी बहुत सारी सखियों ने भी इस विषय में मैसेज लिखना शुरू कर दिया है। साथ ही आज एक खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो सारे युवाओं को भी हम बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं।
0: बिल्कुल, उन सभी को उनकी ऊर्जा को सलाम, और उन्हें ये एक सीख भी देते हैं कि अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक पथ पे आगे
1: बढ़ना
0: बढ़ाते हुए अपने जीवन को संवारते चलें।
1: जी। और
0: और अब
1: अब
0: हम क्या करें,
1: गीत सुनते हैं।
0: चलो।

0: की सहेली कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सारी सखियां सहेलियां और श्रोता भाइयों को और सोनाली तुम्हें भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
0: बिल्कुल आपका जो नमस्कार है सभी ने उसे
1: स्वीकार
0: लिया है और हेल्थ का ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे हैं और हेल्थ का ध्यान रखना सेहत का ध्यान रखना इसलिए जरूरी है कि बदलते मौसम में देखिए ना घर घर में हम सुन रहे हैं किसी को नजला हो गया है किसी को
1: खांसी
0: हो गई है कहीं बुखार है तो ऐसे में अगर हम पहले से ही थोड़ा सा अपना ध्यान रखते चलते हैं ना तो ये जो बदलते मौसम

0: सोनाली, कहाँ खोई हुई हो संदेशों में।
1: यहाँ आने के बाद में हम दोनों नहीं होते हैं दीपा, हमारे साथ में इतने सारी श्रोता, इतनी सारी सखियां जो घर में सुनते हैं और हम उनके संदेश पढ़ते हैं।
0: बिल्कुल, तो संदेशों के माध्यम से बहुत सारी हमारी सखियां इस वक्त हमारे साथ हैं।
1: जुड़ी हुई है। और आज एक खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस।
0: बिल्कुल,
1: तो युवा जो होते हैं ना, किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य की सबसे मजबूत नींव होते हैं। उनके भीतर असीमित ऊर्जा, कुछ नया करने की ललक और दुनिया को बदलने का साहस होता है। और इसी ऊर्जा और सामर्थ्य को सम्मानित करने और युवाओं से जुड़े मुद्दे पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और ये दिन युवा दुनिया भर के युवाओं की उपलब्धियों का उत्सव मनाने का दिन है और समाज निर्माण में उनकी भागीदारी को रेखांकित करने का एक साझा मंच है।
0: बिल्कुल सही कहा। और अगर हमारे देश की हम बात करें तो इस संदर्भ में देखा जाए तो ये दिन और भी खास और जीवंत हो उठता है, क्योंकि हमारा देश जो है वो दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, जहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा 35 वर्ष से कम आयु का है। तो भारत का युवा जो है उसको हम केवल जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड ये नहीं हम बोल सकते, ये आंकड़ा नहीं है वो लोग ये नहीं हम मान सकते, बल्कि देश के आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक बदलाव का मुख्य कारक भी हमारे युवा हैं।
1: ये तो बात आपने बहुत सही कही दीपा। और आज का भारतीय युवा केवल अवसरों की तलाश नहीं कर रहा है, बल्कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और नए विचारों के जरिए खुद अवसर पैदा कर रहा है। अंतरिक्ष से लेकर खेल के मैदान तक या तकनीक से लेकर सामाजिक क्रांति तक भारत का युवा हर क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और एक देश के युवाओं का ये संगम इस बात का प्रतीक है कि जब युवा सशक्त होता है तो वह न केवल अपने देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दिखाने का भी सामर्थ्य रखता है।
1: बस युवाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए
0: बिल्कुल सही
1: कि
0: कहा।
1: ये जो महत्वपूर्ण वर्ष है ना, ये जिंदगी में बार बार नहीं आते
0: बिल्कुल,
1: हमारे।
0: और ये ऊर्जा भी बार बार नहीं
1: नहीं आती,
0: मिलेगी, है ना,
1: हाँ
0: इसे
1: ऊर्जा भी कम
0: संगठित
1: होती।
0: करके रखना होता है।
1: हाँ तो बस ये जो समय है इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई समय का ध्यान रखो, थोड़ा मोबाइल से दूर रहो, थोड़ा पढ़ लिख लो, तो उन बातों को जो युवा ध्यान में रखते हैं ना, उनका जीवन उज्जवल हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: और सबसे जरूर बात है मेहनत।
0: जी बिल्कुल सही कहा। और ये वो सुनहरे वर्ष हैं जहां आप जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास आजादी है, स्वतंत्रता है, क्योंकि आगे चल के जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी जिम्मेदारियां हमेशा बढ़ती जाती है, और उस वजह से कई बार अपने सपनों को हमें पीछे छोड़ना होता है क्योंकि जिम्मेदारी ज्यादा बड़ा रूप ले लेती है। तो आप चाहें जो चाहें वो कर सकते हैं, बशर्ते बस ये ध्यान रखिएगा कि हमारे घर वाले कहीं पे उनका उनकी मानहानि ना हो या उन्हें ऐसा ना लगे कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। अगर आप अपने गांव, देश, प्रदेश कहीं से भी बाहर दूर हैं, तब भी माता पिता को ये लगे जहां भी हमारा बच्चा है बिल्कुल सही है और एक सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ रहा है।
1: और अपने देश, अपने बड़े बुजुर्ग और अपने घर का नाम रोशन हो, इस बात का युवाओं को ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल। अच्छा, एक संदेश आया है, ये पढ़ना चाहती थी सोनाली। इन्होंने आधिकारिक जो थीम है इस साल की वो बताई है, थीम है अलग परिस्थितियां, समान आकांक्षाएं। तो इस विषय पर जोर देता है इस साल का ये थीम कि भले ही दुनिया भर के युवाओं की सामाजिक और भौगोलिक स्थितियां अलग हो, लेकिन उनके सपने और जरूरतें एक जैसी हैं।
1: बहुत सुंदर संदेश लिखकर भेजा है।

0: चलो चलते हैं
1: साड़ियों के संसार में।
0: हाँ बिल्कुल। अच्छा
1: या
0: साड़ियों से संदेश भी आया, लेकिन हम पहले ये जानकारी दे दें कि ये खंडुआ साड़ी होती क्या है। ओडिशा में इसकी प्रसिद्ध ये साड़ी है, वहां की पारंपरिक बांध कला तकनीक से बनाई जाने वाली साड़ी है। वैसे तो उड़ीसा के कई क्षेत्र में बुनी जाती है ये वाली साड़ी, लेकिन मुख्य रूप से कटक जिले के नुआपटना और गंगा मणिबंध गाँव में बुनी जाती है।
1: और दीपा इस साड़ी का आध्यात्मिक महत्व भी है। पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के वस्त्र खंडुआ रेशम से ही तैयार किए जाते हैं, जिन पर जयदेव रचित गीत गोविंद के श्लोक भी बुने हुए हैं।
0: और इक्कत तकनीक से इसमें ताने और बाने के धागों को पहले से बांध कर और रंग रंग करके पैटर्न तैयार किया जाता है, जिसे बंध कला कहा जाता है। और जो दूसरे ट्रेडिशनल जो सिल्क साड़ियां हैं ना, उनकी तुलना में खंडुआ साड़ी काफी हल्की होती है, जिसे पहनना बहुत आसान होता है। इसके सिल्क और कॉटन दोनों में इसे बुना जाता है।
1: और डिजाइन की बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से हाथी, मोर, कछुआ, शंख, फूल और मंदिर की आकृति यानी टेंपल बॉर्डर जैसे शुभ प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। और रंगों की बात की जाए तो लाल, पीला, नारंगी और केसरिया जैसे जीवंत रंगों का अधिक इस्तेमाल होता है। और इस विशेष साड़ी के दो और तीन प्रकार हैं, जैसे खंडुआ पाट जो शुद्ध रेशम से बनी साड़ी होती है, इसका उपयोग मुख्य रूप से मांगलिक अवसरों, त्योहारों, विवाह और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है।
0: जी, और सूती खंडवा उसी तरह होती है, लेकिन इसमें शुद्ध कॉटन से बनाई जाती है। ये वाली साड़ी हल्की होती है, ब्रीदेबल यानी कि सांस लेने योग्य। अगर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि साड़ी पहन के कुछ भारी सा लग रहा है
1: ये
0: या
1: चुभ रहा है।
0: चुभ रहा है, वैसा नहीं लगता इसे पहनकर। एकदम आरामदायक होती है ये वाली साड़ी। आप चाहें तो सखियां रोजमर्रा के उपयोग में ले सकती हैं इसको, और गर्मी के मौसम के लिए तो बहुत उपयुक्त साड़ी है ये।
1: और गीत गोविंद खंडुआ, ये खंडुआ का सबसे पवित्र और पारंपरिक रूप माना जाता है। इसके बॉडी या आंचल पर देवनागरी या ओडिया लिपि में गीत गोविंद के श्लोक बुने जाते हैं। इसे मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ के वस्त्रों के रूप में और धार्मिक अनुष्ठानों में पहना जाता है। और एक है टसर खंडुआ, इसमें टसर सिल्क का उपयोग किया जाता है। इसमें साड़ी को एक प्राकृतिक, हल्का, सुनहरा और मैट टेक्सचर मिलता है।
0: अब देखो ये इतनी तरह की साड़ी है, तो अगर आपको टसर जो फैब्रिक है वो पसंद है तो उसकी साड़ी ले सकते हैं, अगर कॉटन पसंद है तो वो ले सकते हैं, सिल्क पहनना चाहती हैं तो वो ले सकते हैं। आप चाहें तो इस साल की दिवाली या बड़े उत्सव, कोई बड़े उत्सव के लिए भी इस साड़ी को ले सकते हैं। तो प्राइस रेंज अगर आप बोलें कि किस प्राइस में आती होंगी, तो 2,500 से 25,000 के ऊपर तक ये साड़ी मिलती है। तो जितने शुद्ध रेशमी धागे उसमें बढ़ते जाएंगे, वैसे ये साड़ी का दाम। क्या पहनना ज्यादा पसंद है? तो हमारी एक सहेली लिखती है कि मुझे साड़ी पहनना बेहद पसंद है और पहनती भी हूँ, पर अब ड्रेस पहनना शुरू कर दिया है। ड्रेस पहनना ज्यादा इजी लगता है, झट से पहन लो और चल दो। मुझे भी साड़ी में खूबसूरती ज्यादा दिखती है, और सलवार सूट हो या कोई भी ड्रेस हो, अगर सलीके से पहना गया रंग उम्र और समय के अनुसार तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। पर साड़ी की बात तो कुछ और निराली है, तो भाई साड़ी जीतती जा रही है, जीत तो साड़ी की हो रही
1: और
0: है।
1: एक सखी ने लिखा है, आज हरियाली अमावस्या है, आज भी महिलाएं खूबसूरत रंग बिरंगी हरी साड़ी चूड़ी में सज धज कर मंदिरों में, बाजारों में दिख रही है। साड़ियां, चूड़ियां और राखियों की खरीदारी चल रही है। मेहंदी लगवाने की भी भीड़ लगी हुई है। गर्मी है फिर भी सभी को अपनी बारी का इंतजार है।
0: वही हमारे एक श्रोता भाई ने लिखा है, जी ये डिपार्टमेंट तो केवल माताओं बहनों का है। भाई बात तो सही है, लेकिन खरीदनी तो जाने जाना तो आप ही को पड़ेगा ना। आगे लिखते हैं कि इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता, केवल साड़ियों के विषय में सुनकर जानकारी बटोरेंगे। आप सिर्फ जानकारी नहीं बटोरेंगे, इस साल उन्हें दिलाएंगे भी।
1: हाँ बिल्कुल, प्रॉमिस चाहते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि काश साड़ी परिधान पुरुषों के लिए भी होता, पैंट शर्ट तो महिलाओं के परिधान में सम्मिलित हो चुका है, धोती थोड़ा साड़ी से मैच करती है, पूरी नहीं। पर देखा है ना, आजकल साड़ियों से भी ना पुरुष उसके परिधान बनाते हैं, उसके धोती सिलवाते हैं,
0: हाँ
1: कुर्ते
0: बिल्कुल।
1: बनवाते हैं, जैकेट बनवाते हैं। तो पुरानी अगर साड़ी हो चुकी है तो उससे जो हमारे पुरुष भाई हैं वे भी उससे कुछ कुछ जैकेट्स वगैरह, धोती वगैरह बनवा सकते हैं।
0: बिल्कुल, और वो भी कहीं दिखा सकते हैं कि देखिए हमारा भी अंदाज अलग है, निराला है। जैसे कि इस गाने में हमारी हीरोइन देखिए क्या कह रही है।

सुंदरी तो जरूर हो पर बड़ी मशहूर हो।

வந்தே மாதரம். ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी।

0: शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।
1: सोनाली, अब एक वक्त हो चला है अंतराल का,
2: तो लेते हैं ब्रेक।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम
1: कार्यक्रम
0: है
1: है
0: सखी
1: सखी
0: सहेली।
1: सहेली।
0: और एक मैसेज को पढ़ के ना दीपा मैं थोड़ी भावुक हो गई।
1: क्यों?
0: इतना सुंदर मैसेज है, हमारे एक साथी लिखते हैं कि मेरी माताजी के देहांत को 19 साल हो गए हैं, पर आज भी मेरी माताजी के नाम से हर साल एक बार एक साड़ी खरीदता हूँ, और यथा उचित प्रसंग नहीं तो उनके जन्म दिवस पर किसी जरूरतमंद बुजुर्ग महिला को ये साड़ी दान में दे देता हूँ। निजी तौर पर जब भी मैं अकेला महसूस करता हूँ तब मेरी माताजी की साड़ी को ओढ़ के सो जाता हूँ, तो मुझे मेरी माताजी की कमी महसूस नहीं होती। इस विषय को आज चर्चा में लाने के लिए आप सभी और विविध भारती का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ।
1: जी, ये कुछ इसी तरह की भावनाएं शायद हमारी बहुत सारी सखियों की भी होती होगी। हम जो हमारे प्रिय हैं, जो हमसे दूर चले जाते हैं, उनकी कोई पहनी हुई चीज सदा हमारे पास रहती, तो एक धरोहर के रूप में हम वो
0: हमारे
1: हमें
0: साथ
1: साथ
0: रहती।
1: रहती है और याद उनकी ताजा बनी रहती है। तो आपने भी ये अपना अनुभव शेयर किया, तो उसके लिए हम आपको
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद
0: कहते
1: कहते हैं।
0: हैं। और भाई देखिए ना, कभी कभी दीपा ऐसा होता है ना कि बहुत सारी साड़ियों के सेल भी लगे होते हैं, उसकी भी सूचना हमें अखबारों से मिल जाती है
1: जी
0: कि फला फला कंपनी की जो साड़ियां हैं वो बहुत सस्ती और बहुत अच्छी होती है, तो उसका हमारे शहर में सेल लग गया, उसमें 50% ऑफ है, तो कभी 25% है, और खासकर बारिश के मौसम में बहुत साड़ियों के सेल लगते हैं।
1: सोनाली, आपका इशारा समझ गए हम, मान गए भाई कि अखबार रोज पढ़ना बेहद जरूरी है।
0: और उसमें सिर्फ सिर्फ साड़ी के बारे में नहीं पढ़ना है, नहीं तो ऐसा है कि उस पन्ना खोल लिया, देख लिया कि कहाँ
1: हाँ,
0: सेल लगा है।
1: हम महिलाएं यही करती है ना, सबसे पहले उस पन्ने पे जाती हैं जहां पे एग्जीबिशन कहाँ चल रही है, सेल कहाँ चल रही है, सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं। और फिर घर में कहते हैं भाई शनिवार रविवार को हम तो बिल्कुल व्यस्त रहने वाले
0: नहीं, यानी रंग बिरंगा जो पन्ना होता है ना वो महिलाओं को ज्यादा भाता है, पर ऐसे नहीं है, गृहिणियों को भी सारा पेपर सारा अखबार रोज पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, अखबारों से हमें बहुत बहुत नए नए विषयों की जानकारी मिलती है, और
1: बिल्कुल।
0: बहुत कई बार हम सचेत भी हो जाते हैं दीपा, कि अगर देखिए ना वो जो दुर्घटना घटी, अगर उसमें ऐसा होता, यानी कोई मेन होल में गिर गया है, मोबाइल में लगा हुआ था लड़का बच्चा जो था, तो हमें बाहर निकलते वक्त मोबाइल ऐसे मोबाइल

0: झुक कर देखते नहीं जाना है, हमें रास्ते से चलते वक्त सावधानी से जाना है। ने ये मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे कई सारे ऐसे वाकया होते हैं कि जो हम अखबारों के कारण हम सचेत हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और कहीं हमारे शहर के किसी और क्षेत्र में जहाँ बहुत दूर है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमें सब कुछ पता चलता रहता है। यहाँ तक कि देश विदेश की सारी मुख्य जानकारियां भी हम प्राप्त कर पाते हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं हैं तो हमें कुछ बाहर के बारे में ना पता चले, ये जरूरी नहीं है। हर चीज के लिए सतर्क और सचेत रहना आज के जमाने में सबके लिए, उम्र कोई भी हो, बेहद जरूरी है।
0: वैसे दीपा, अखबार केवल कागज के कुछ पन्नों का संग्रह नहीं होता है, बल्कि वर्तमान समय का सजीव दस्तावेज होता है। इसमें मौजूद हर तरह का समाचार हमें समाज, देश और विश्व स्तर से जोड़कर रखता है। और जो लोग रोज अखबार पढ़ते हैं, वे केवल घटनाओं से परिचित नहीं होते, बल्कि बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना भी सीख जाते हैं। और ऐसा होता है ना कि सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ जब हम अखबार के पन्ने खोलते हैं, तब मानो ज्ञान की एक नई खिड़की खुल जाती है। कहीं विज्ञान की नई उड़ान है, कहीं खेल जगत की नई विजय गाथा है, कहीं संस्कृति की सुगंध है, तो कहीं समाज की चुनौतियों का आईना हमें नजर आता है।
1: ये इसी बात पर देखो एक संदेश आया है। ये संदेश में हमारे श्रोता भाई कहते हैं कि मैं सुबह सुबह हमेशा चाय पीते पीते अखबार पढ़ता हूँ, और दोपहर में आराम से क्रॉसवर्ड, जो उसमें सेक्शन होता है जिसमें शब्द खाना पूर्ति करना होता है, वो करता हूँ। इससे मेरे दिन की शुरुआत अच्छी होती है और मूड भी फ्रेश होता है।
0: ये बहुत अच्छी आदत है, ये ना खासकर बुजुर्गों को भी ये करना चाहिए। जो क्रॉसवर्ड होते हैं ना, उससे हमारा दिमाग तेज रहता है, उससे हमारा दिमाग चलता है। तो बढ़ती उम्र के साथ साथ क्या होता है, दिमाग की नसें थोड़ी सी सिकुड़ने लगती हैं, तो क्रॉसवर्ड जरूर हमें बढ़ती उम्र के साथ करना चाहिए। एक हमारे साथी ने लिखा है कि स्कूल में किताब पढ़ने का शौक हुआ स्कूल की लाइब्रेरी के कारण, उसके बाद बाहर की किताबें, कुछ चुनिंदा लेखकों का पता चला, उनको पढ़ा, फिर अखबार थाम लिया, जो अब तक साथ है। कितनी अच्छी बात है। वही एक साथी कहते हैं कि अखबार पढ़ना सबसे पहले स्कूल में हर रोज हिंदी की हेडलाइन के प्रेयर में पढ़ने के लिए बोला जाता था। मैट्रिक में स्कूल में टीचर ने बताया इंग्लिश पेपर पढ़ो, इससे इंग्लिश अच्छी होती है। बस वो आदत दिनचर्या में शामिल हो गई है। बहुत लोग सुबह की चाय के साथ अखबार देखते हैं, जो एक बेहतरीन दिनचर्या है, जो ना सिर्फ देश दुनिया की खबरों से जोड़ता है, बल्कि मानसिक विकास में भी मदद करता है।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अखबार जो भाषा का मूक शिक्षक है, इसकी शब्द संपदा हमारी अभिव्यक्ति को निखारती है, विचारों को परिपक्व बनाती है और दृष्टिकोण को व्यापक भी करती है। और संपदी लेख जो अगर पढ़ते हैं तो उससे हम तर्क करना सीखते हैं, जबकि प्रेरणादायक समाचार जीवन में आशा और उत्साह का संचार करते हैं। और देखो ना सोनाली, आज सोशल मीडिया के तेज बहाव में सूचनाएं क्षण भर में आती जाती रहती हैं, पर लेकिन अखबार सत्य, संतुलन और विश्वसनीयता का दीपक बनकर हमारे विश्वास को प्रकाशित करता है।
0: एक हमारी सखी ने भी लिखा है कि मुझे संपादकीय पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसमें तार्किक और गंभीर सोच विकसित होती है। स्क्रीन पर स्क्रॉल करने के बजाय प्रिंट या अखबार पढ़ने से ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ जाती है। वर्षों से सुबह का अखबार निश्चित और शांत होकर पढ़ना चाहती हूँ। सुबह का काम निपटाकर 9 बजे के बाद नाश्ता करने के बाद मैं पेपर पढ़ती हूँ, और ज्ञानवर्धन के साथ मेरा बहुत समय अच्छा व्यतीत होता है। किसी कारणवश अगर दिन में पेपर छूट जाए, तब भी मुझे समय मिलता है, तो रात में मैं पेपर जरूर पढ़ती हूँ।
1: बिल्कुल। और ये संपादीय जो संपादी लेख जो होती है,
0: संपादकीय।
1: संपादकीय लेख जो है, इसे पढ़ना बेहद जरूरी है बच्चों को भी, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके की प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव और मतलब पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, तो इसमें ये एडिटोरियल सेक्शन आपको बहुत काम करता है, बहुत मदद करता है जानकारी हासिल करने के लिए। और कहीं पर कुछ ऐसा सेक्शन आता है कि आपको ऐसे या निबंध कहीं पे लिखना है, तो ये खंड आपको आसानी से उसको पार करने में मदद करता है।
0: और आप क्या करना है,
1: हमें तो गीत सुनना है।
0: सुनते हैं गीत।

0: भाई अखबारों से यारी करनी है, और थोड़ा ये मोबाइल में भी बैठना जरूरी है, लेकिन वो
1: मोबाइल से दूरी
0: स्क्रोलिंग से
1: करना है।
0: उतनी नहीं। अगर ज्ञान की जरूरत उसके द्वारा लेनी है तो वो भी लेना जरूरी है। लेकिन एक देखिए संदेश यहाँ पर आया है, हमारे श्रोता ने लिखा है कि अखबार पढ़ना, ये सबसे पहले स्कूल में हर रोज हिंदी की हेडलाइन प्रेयर में पढ़ने के लिए बोला जाता था, और मैट्रिक में स्कूल में टीचर ने बताया था कि इंग्लिश पेपर पढ़ो, तो इंग्लिश इससे हमारी अच्छी हो गई। उसके अलावा एक और संदेश आया है, ये कहता है कि स्कूल में किताबें पढ़ने का शौक हुआ और स्कूल की लाइब्रेरी के कारण, उसके बाद बाहर की किताबें कुछ चुनिंदा लेखकों का पता चला, उसको पढ़ा, फिर अखबार थाम लिया, जो अब तक साथ है।
1: एक साथ ही लिखते हैं, अखबार पढ़ना ये ऐसी आदत है, जिस दिन अखबार की छुट्टी होती है उस दिन बहुत खालीपन लगता है, वो दिन अधूरा लगता है। जो समय अखबार पढ़ने का होता है समय कटता नहीं। मेरा समय दोपहर का है अखबार पढ़ने का, जब काम से फ्री होकर बैठती हूँ तो अखबार पढ़ती हूँ, और इसी समय सखी सहेली कार्यक्रम आता है तो उसको भी सुनते हुए अखबार पढ़ते हुए। अखबार हम जो पढ़ते हैं हमको वही अखबार अच्छा लगता है। जिस दिन गलती से कोई दूसरा डाल जाए तो पढ़ लेते हैं तो मजा नहीं आता है उस अखबार। मैंने अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी अखबार भी शुरू किया था, दोनों बस स्पोर्ट की खबर पढ़ लेते थे बस, बाकी कुछ नहीं। अखबार पढ़ने की आदत सभी को होना चाहिए, जिससे शहर देश विदेश के समाचार मिलते हैं, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है।
0: बिल्कुल, और ज्ञान बढ़ाने के लिए मेहनत करना जरूरी है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें, और यही हमारा आज का शब्द भी है। तो बहुत सारे विचार आए हैं, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेहनत सफलता की कुंजी है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कठिन श्रम के बिना तो कुछ भी नहीं मिलता। किसी लक्ष्य को पाने या काम को पूरा करने के लिए किया जाने वाला शारीरिक या मानसिक प्रयास, इसे लोग पुरुषार्थ या श्रम भी कहते हैं, जो सफलता की तरक्की की नींव है। मजदूरी, खेलकूद या खेती जैसे काम जिसमें शरीर की ताकत लगती है, मानसिक श्रम पढ़ाई योजना बनाना या बौद्धिक कार्य जिसमें दिमाग का उपयोग होता है।
1: एक
0: और
1: साथ ही कहते हैं
0: जी
1: ये पढ़ना चाह रहे।
0: बस इसमें एक बात और इन्होंने कही है कि इंसान हर कठिनाई का सामना करना सीखता है, मेहनत से व्यक्तित्व का विकास और मजबूती भी आती है।
1: एक कहते हैं मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। मेहनत वो सुनहरी कुंजी है जो भाग्य के बंद कपाट को खोलती है। मेहनत ही सफलता का रहस्य है। यानी इन्होंने पूरा जीवन का सार ही लिख दिया इस छोटे से संदेश में।
0: सही बात है। एक संदेश और ये कह रहा है कि मेहनत हमारा जीवन, मेहनत हमारा नारा, मेहनत में जगमगाता जगमगा को तकदीर का जगमाता जगमगाता है तकदीर का सितारा। इतिहास गवाह है कि मेहनत हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, बिना मेहनत जीवन में सफलता नहीं।

0: मेहनत सफलता की ऊंचाइयों तक हमें पहुंचने में संभव कर देता है हमारा रास्ता।
1: एक सखी ने लिखा है, हमारी दोनों सखियां मेहनत करके इतने सुंदर और अच्छे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करती है, फिर उन्हें सजाकर प्रस्तुत करती है। हम सभी मिलकर सुनते हैं, उनके बारे में दो शब्द कहते हैं, अंत में हम और आप दोनों ही खुश होते हैं। मेहनत करने के बाद जो मिलता है उसकी खुशी का कोई वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए मेहनत तो जरूरी करनी चाहिए। कभी कभी परिणाम देर से मिलता है पर मिलता जरूर है।
0: बिल्कुल सही कहा,
1: और
0: और
1: धन्यवाद कहते हैं।
0: बिल्कुल धन्यवाद उन्हें। और देखिए, मेहनत सिर्फ सखियां नहीं, आप भी उतनी ही करते हैं।
1: कितने
0: आप
1: सुंदर
0: किस
1: सुंदर
0: इतने
1: मैसेज
0: सुंदर
1: लिखते
0: सुन
1: हैं।
0: बिल्कुल कभी कभी तो ऐसा लगता है इस मैसेज को लें, किस मैसेज को छोड़ें, ये भी असमंजसता हमारे सामने आ जाती है। और मेहनत के बगैर तो कहीं कोई सुंदरता आ ही नहीं सकती, जैसे कि इस गाने में ये सुंदरता है।

0: अच्छा
1: सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
0: तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर सबको मालूम है।

0: दीपा,
1: जी
0: हमारे इतने सारे श्रोताओं ने, सखियों ने मेहनत पर भर भर के कमेंट्स लिखे हैं। एक साथ ही लिखते हैं कि मेहनत सफलता की पहली सीढ़ी है, मेहनत के बिना कोई भी सपना अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। किसान तपती धूप में खेत में पसीना बहाता है तभी धरती सोना उगलती है,
1: क्या बात।
0: विद्यार्थी दिन रात पढ़ाई करता है तभी सफलता उसके कदम चूमती है, कलाकार बार बार अभ्यास करता है तभी उसकी कला में निखार आता है।

0: यानी सफलता अचानक नहीं मिलती, उसके पीछे अनगिनत छोटे छोटे प्रयास छिपे होते हैं। याद रखिए, किस्मत का रास्ता दिखा सकती है, अवसर दरवाजा खोल सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का काम मेहनत ही करती है।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह से एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि कभी कभी हम मन में कुछ बातें ठान रहते हैं और कि अमुक काम करेंगे, पर सिर्फ मन में ही सोचते ही रहते हैं और उस कार्य को करते ही नहीं। कार्य सिर्फ सपना बनकर रह जाता है, यानी मेहनत नहीं करने से कार्य सिद्ध नहीं होता है। संस्कृत में एक श्लोक है, उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि नाम मनोरथे, यानी कि भाई तभी कोई भी काम पूरा होगा जब आप उसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे।
0: और एक साथी कहते हैं कि बिना मेहनत के कोई भी कार्य संभव नहीं है, और इस कड़ी मेहनत से जो प्राप्त होता है उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। परिश्रम से मिली सफलता में जो सुकून है वे कहीं और नहीं है। बेशक सफलता देर से मिले, पर निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मकान बनाने से ज्यादा समय महल बनाने में लगता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश है, ये कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, मेहनत वो सुनहरी कुंजी है जो भाग्य के बंद कबाड़ को खोलती है, मेहनत ही सफलता का रहस्य है।
0: और दीपा, जब हम कोई व्यंजन बनाते हैं तब भी हमें थोड़ी मेहनत करना पड़ता है,
1: बात तो बिल्कुल सही कही।
0: क्योंकि ऐसा होता है ना कि बोलते हैं कि सिर्फ ये तो 2 मिनट में बन जाएगा। हाँ, बनने में भले ही उसे 2 या 4 या 5 मिनट लगते हैं, पर उसके पीछे जो तैयारी होती है ना, उसमें 1 घंटा चाहिए। कि उसमें जब हमें प्याज काटना होता है, मिर्ची काटना पड़ता है, फिर अगर कुछ हरी धनिया है तो उसे साफ करना पड़ता है, धोना पड़ता है, फिर उसके बाद में फिर बर्तन कौन से, सब चीज के जिस चीज में बनाना है हमें वो बर्तन अलग अलग चुनने पड़ते हैं, तो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। यानी मेहनत के सिवा हमारा व्यंजन भी नहीं बन सकता।
1: बिल्कुल सही कहा भाई, मेहनत हम करते चलेंगे लेकिन साथ में कैसे बनाना है वो भी सीखते चलेंगे। तो ओट्स की एक रेसिपी आई है सोनाली, ये इसमें सामग्री दिया है, ओट्स को लेना है आधा कप, पानी या दूध ले सकते हैं आप 1 ही से 1.5 कप तक। सब्जियां लेनी है, प्याज टमाटर गाजर या मटर बारीक कटी हुई, आपके पसंद की और भी सब्जियां आप बढ़ा सकते हैं। तड़के और मसाले के लिए घी या तेल ले लें, जीरा हल्दी नमक और लाल मिर्च। बनाने की विधि है कि कढ़ाई में घी या तेल गर्म करें, जीरा और प्याज डालकर हल्का भूने, बारीक कटी सब्जियां और टमाटर भी डालें, हल्दी नमक और मसाले डालकर इसको मिलाएं, ओट्स डालकर 1 मिनट तक और भूने। अब पानी या दूध डालकर उबले, इसमें उबाल आने दें, 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं, ये थोड़ा सा गाढ़ा होता चला जाएगा, ये ओट की तासीर, आप जितना जितना पानी डालेंगे वो सोखता चला जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए एक तरह की खिचड़ी की तरह ही हो गई। अब इसमें ओट्स के साथ आप चाहें तो थोड़ा हुआ भीगा हुआ, इसी रेसिपी में भीगी हुई दाल डाल सकते हैं, जैसे मोगर की दाल या मूंग की दाल की जो छिलके वाली मूंग की दाल है वो भी डाल सकते हैं। तो ये अपने आप में एक पूर्ण आहार बन जाएगा।
0: और एक साथी ने लिखा है कि ओट्स को कढ़ाई में भून ले, उसे ठंडा कर ले, उस भुने हुए चने के साथ उसे पीस ले। आपके लिए स्वादिष्ट पौष्टिक सत्तू आटा तैयार है, और इसी आटे से आप नमकीन पराठे और रोटी बना सकते हैं। ये सुपाच्य भी है और खाने में बहुत लजीज लगती है। देखिए ना, ओट्स के बहुत सारे व्यंजन बनाए, ओट्स का चीला बनाया जा सकता है। ओट्स को सूखा ही हमें पीस लेना है, उसमें फिर आप थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा चावल का आटा मिला दे, उसमें अदरक लहसुन मिर्ची की पेस्ट डाल दे, और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसका घोल बना के, और उसके चीले बना सकते हैं, गरम गरम भी अच्छे लगते हैं। उसके बाद में इसी मिश्रण में अगर आप थोड़ा सा रवा डाल के, दही डाल के उसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख दे, और जब बनाना हो तब उसमें फ्रूट सॉल्ट डाल के उसका हम ढोकला भी बना सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: और एक और संदेश देखिए, ये एक छोटी सी रेसिपी आई है सोनाली, कहते हैं कि ओट्स का चीला बनाने के लिए आप 1 कप ओट्स लें और 1 कप बेसन, दोनों मिक्स कर लें। इसमें लौकी प्याज टमाटर हरी धनिया, आप चाहें तो गाजर वगैरह भी कीस के कद्दूकस करके डाल सकते हैं। घी लगाकर इसको चीले बनाएं और हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। और जब ये चीले बनाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा घर में बच्चों को कि आपने इन्हें ओट्स का चीला खिला दिया है ना।
0: नहीं, बहुत अच्छा लगता है ओट्स, और उसकी खीर भी बहुत अच्छी बनती है। कि घी में थोड़ा सा ओट्स को भून लिया, और उसके बाद में उसमें दूध डाल दिया। अगर आप उसमें शक्कर नहीं डालना चाहते हैं तो उसमें खजूर है ना, खजूर को थोड़ा सा घी में ऐसा नरम करके और उसे मिक्सी में से चला के उसकी जो पेस्ट है, खजूर पेस्ट डाल के उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के दे सकते हैं। तो ये बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। तो ऐसी पौष्टिक चीजें जब घर में बनती है ना, और जब घर उस खुशबू से महकता है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल सही। और ओट्स का सत्तू बनाना भी बताया है हमारे एक श्रोता ने, कहते हैं कि ओट्स को कढ़ाई में भून लें, उसे ठंडा कर लें, इसे भुने हुए चने के साथ पीस लें, आप

0: लिए स्वादिष्ट पौष्टिक सत्तू आटा तैयार है। इस आटे से आप नमकीन पराठे बनाइए या रोटी बनाइए, ये सुपाच्य भी है और खाने में बहुत लजीज है।
1: और अब क्या करना है?
0: देखिए क्या करते हैं।

0: कोई नहीं पार, कैसी तू बनती है री, आई,
1: हट गरिया किनारे एक

0: कभी हाथ नहाए कभी दिन में समाए काहे सतौती है री आई हाय
1: फट दरिया किनारे क्यों बंगलो गगरी जय जय
0: जय जो जय अरे जाएगी कहां रे पूरी अरे जाएगी कहां।

0: दीपा हमारे एक साथी लिखते हैं कि साथे ओट्स में कुछ भी मिक्स नहीं होता, ये केवल जई ओट्स शुद्ध रूप होते हैं। हालांकि स्वाद और सेहत के लिए लोग इसमें दूध, फल और मसाले मिलाते हैं। मीठे ओट्स में मिलने वाली चीजें, उन्होंने कहा कि उसको पकाने भिगाने के लिए दूध या पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसमें केला, सेब, स्ट्रॉबेरी या आम, मेवे या बीज, बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, कद्दू के बीज या मीठेपन के लिए उसमें शहद गुड़ या मेपल सिरप डाल दिया जा सकता है, और इस तरह से स्वादिष्ट ओट्स की रेसिपी बन सकती है।
1: तो आज तो बहुत सारे ओट्स बनाने के तरीके हमने भी सीख लिए हैं ना।
0: बहुत सारे सीखे, श्रोताओं से हम बहुत कुछ सीखते हैं दीपा।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो, अब वक्त कहता है कि आज तो हमें लेना होगा विदा।
0: पहले श्रोताओं को धन्यवाद कह देते हैं, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। और अब लेते हैं इजाजत, आप सभी को सोनाली पाठक
1: और दीपा माहेश्वरी का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: कहते हैं सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। और अब लेते हैं इजाजत, आप सभी को सोनाली पाठक
1: और दीपा माहेश्वरी का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग।
1: मैं एक रेडियो स्टेशन गया, एफएम रेडियो तब नए नए आए थे। जीवन का मेरा पहला अनुभव था कि मैं एक रेडियो स्टेशन के अंदर गया और उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया। मैंने जस्ट एक मेल भेजी थी उनको कि मैं आना चाहता हूँ, ऑडिशन देना चाहता हूँ। उन्होंने ऑडिशन में बुला लिया। मैंने जीवन में उससे पहले कभी कोई रेडियो स्टेशन नहीं देखा था। मैंने वहां जाके विभत्स ऑडिशन दिया, एक बहुत ही भयानक, अभी भी सोचता हूं तो मैं सिहर जाता हूं। मैं एक किरण श्रीधर नाम के आरजे हुआ करते थे, अभी भी हैं, तो मैं अभी भी मतलब कभी कभी किरण को नतमस्तक हो जाता हूं कि उसने मुझे आधे घंटे कैसे झेला था उस स्टूडियो के अंदर। मैं तो नहीं झेल सकता था अगर कोई मेरे जैसी हरकतें करता वहां पे। तो मैंने बहुत खराब ऑडिशन दिया, बहुत ही ज्यादा खराब। मतलब मैं स्टूडियो के बाहर जाते जाते ही समझ गया था कि ये लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहाँ मेरी कहानी में एंट्री होती है विविध भारती की। तो विविध भारती मैंने सुनना शुरू किया मेरे ख्याल से जब मैं 9वीं में फेल हुआ था उसके बाद, क्योंकि रात में छाया गीत और ये सब आते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, थोड़े सुकून वाले गाने होते थे।
2: बिल्कुल
1: क्योंकि रात में आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए था, क्योंकि तपता हुआ दिन निकाला है सारे स्कूल से लेके पड़ोस तक। तो वहां मैंने विविध भारती सुनना शुरू किया, जहां मैं आप सबको सुनता था। कमल शर्मा थे, आप थे, आप हैं और बहुत सारे उद्घोषक। मुझे अभी भी याद है आप लोगों का एक होली का कार्यक्रम आया था जो बहुत बहुत मजेदार था। मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा था एक कैसेट में। तो मैं बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करता था। अमीन सयानी साहब को मैं मिमिक किया करता था। तो मुझे लगा था रेडियो में तो मैं जाके मतलब तूफान ही मचा दूंगा, क्योंकि जैसे कार्टूनिंग में मैंने तूफान मचाया हुआ है अपने दिमाग में। तो जब रेडियो में गया और मैंने ये पूरा ऑडिशन खराब कर दिया, खराब करने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था तो जो आरजे थी, जैसा कि होता है, एक कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन गई एकदम फट करके।

0: ऑन एयर। और मैंने कहा नहीं, ये मुन्ना दे की आवाज है। तो उनके जो क्रेडिट्स थे उसमें क्रेडिट गलत गया हुआ था। तो उन्होंने बोला पक्का, मैंने कहा आप चेक कर लीजिए, इंटरनेट था, उन्होंने तुरंत चेक किया, उन्होंने तुरंत मिस्टेक करेक्ट किया। और उसके बाद वो मन्ना डे पर कार्यक्रम था और मैंने उनको लगातार ट्रिविया देना शुरू किया, वो प्रोग्राम ठीक हो गया। और उनको लगा कि ये तो ठीक है, आया था
1: काम
0: ऑडिशन
1: का
0: देने
1: आदमी
0: लेकिन
1: है।
0: आदमी काम का है। लेकिन वो 6 महीने तक मुझे हायर नहीं कर सकते थे ऑडिशन में, अगर आपने गड़बड़ कर दी, उनका कुछ तो रूल था, वो 6 महीने तक हायर नहीं कर सकते थे। मैंने 6 महीने से उंगलियों पे गिने, 6 महीने मुझे पता है मैंने कैसे गिने। और मैंने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि 6 महीने ऐसे नहीं होता है, 6 महीने वर्किंग डेज के हिसाब से होता है। मैंने 6 महीने डेट टू डेट लगा के
1: और दिन बढ़ गए इसके बाद।
0: नहीं, कम हुए, क्योंकि वर्किंग डेज के हिसाब से तो 6 महीना अगर काउंट करेंगे तो वो 7 महीना हो जाता है, सैटरडे संडे हटा के, नेशनल हॉलीडेज हटा के। मैंने वो गिने ही नहीं, जस्ट जिस दिन 6 महीने पूरे हुए मैं बैठा, मैंने कॉइंस बनाई 1 पेज की कि मैंने क्या क्या गड़बड़ किया रेडियो में आपके यहाँ आके, लेकिन मुझे दूसरा चांस चाहिए। वो कॉमिक्स बना के मैंने प्रिंट किया 1 पेज का और मैंने उनको भेज दिया। तो मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया कि अच्छा आप कार्टून बनाते हैं। मैंने कहा हाँ, तो आप आके मिलेंगे हमसे। मैं वेट कर रहा था रेडियो स्टेशन से कॉल आएगी, लेकिन ये किसी एड एजेंसी से कॉल थी। वो रेडियो से किसी एड एजेंसी को चला गया था मेरा, मेरी कॉमिक। तो वो रेडियो की जो प्रोग्रामिंग डायरेक्टर थी, उनके हस्बैंड थे, उनकी एड एजेंसी थी, उन्होंने मुझे फ्रीलांस दे दिया। वो
1: वाह।
0: फ्रीलांस निपटाते निपटाते तक मुझे रेडियो से कॉल आया कि अभी 6 महीने पूरे हुए तुम्हारे, अब आ जाओ। तो वो कॉमिक्स की बदौलत मुझे थोड़ा कॉमिक्स का काम मिला, थोड़ा रेडियो को मिला, और मेरा रेडियो में पदार्पण हुआ इस तरह से। और फिर मैंने रेडियो शोज भी किए। फिर एक वही है ना कि एक फेलियर के बाद जो चमड़ी मोटी हो जाती है वो,
1: करेक्ट।
0: हाँ वो चमड़ी मोटी हो गई। तो रेडियो शोज भी किए, प्रोड्यूस किया बहुत कुछ, वॉइस ओवर्स किए, फिर तो शर्म भी झिझक भी चली गई माइक के
1: बिल्कुल।
0: सामने की। तो इस तरह से रेडियो का करियर शुरू हुआ मेरा।
1: तो यहां से रेडियो शुरू हो गया, ऐसे आइए
0: रेडियो से रेडियो,
1: रेडियो से रेडियो।
0: हाँ मुझे मुंबई आना ही था, क्योंकि क्या हो रहा था बैंगलोर में, धीरे धीरे जो वहां की प्रादेशिक भाषा है कन्नड़ा, उसका संगीत बढ़ रहा था, जो कि बढ़ना ही चाहिए था। वहां कंपटीशन भी बढ़ रहा था, नए स्टेशन आ रहे थे, और मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब मुझे बंबई चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं बैंगलोर में भी नेशनल प्रोग्रामिंग हैंडल करता था उस स्टेशन में, और यहां से मैं बैंगलोर से वॉइस करके उनको भेजता था मेरी वॉइस हिंदी में। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जगह शायद मुंबई है। तो हमारे स्टेशन में उस जमाने में लाफ्टर चैलेंज बड़ा चला हुआ था, तो रेडियो में भी एक ऐसा लाफ्टर चैलेंज का रेडियो वर्जन चल रहा था हमारे स्टेशन में, जिसके जज थे विनय पाठक। तो मैंने विनय पाठक का नंबर मेरे पास था, क्योंकि उनका मैं सैटरडे के सैटरडे रिकॉर्ड किया करता था। उसके अलावा जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था, और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी, क्योंकि हिंदी सिनेमा मैं बेहतर तरीके से समझता था। तो इस बीच मुझे मन्ना डे साहब का एक पूरा 1.5 घंटे का कार्यक्रम प्रोड्यूस करने मिला, जिसमें मन्ना डे साहब खुद आए थे। तो वो मेरे लिए मेरा पहला जो कहना चाहिए सेलिब्रिटी मोमेंट था वो।
1: बिल्कुल।
0: हाँ, मन्ना डे साहब से मिलना, मधुशाला के CD पे उनसे साइन कराना, और प्रोग्राम के बाद जब मैं उनके साथ बैठा कुछ आधे घंटे, उनके साथ थोड़ी बात बात की, तो उन्होंने बोला यार ये सब सवाल तो अंदर करने चाहिए थे, अंदर वालों ने तो किया ही नहीं। तो उससे और मेरे कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा बूस्ट आ गया। उसके बाद मैं उनके साथ बराबर टच में बना रहा। मेरे ख्याल से 1 मई को उनका जन्मदिन होता है, और
1: बिल्कुल, एक
0: हर
1: मई
0: एक
1: को
0: मई
1: होता
0: के
1: है।
0: 1 मई में उनको कॉल किया करता
1: क्या
0: था।
1: बात है, मैं भी
0: तो और मुझे लगता है कि उनके जैसा गायक ना कोई आया ना कोई आएगा। तो ये हुआ था। इसके अलावा जितनी भी फिल्में रिलीज होती थी या कोई कलाकार आ रहा होता था, तो मुझे वो जिम्मेदारी दे दी गई थी कि तू इनका इंटरव्यू कर लिया कर, तुझे जो जो पूछना है पूछ लिया कर, और बाद में पैकेज करके हम लोग इसको चला लिया करेंगे स्टेशन में। तो मुझे एक बार आशा भोसले जी का इंटरव्यू करने मिला, और मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने आधे घंटे इंटरव्यू किया, और जो फोन कटा मैंने देखा मैंने रिकॉर्ड बटन दबाना ही मैं रिकॉर्ड बटन दबाना ही भूल गया था। और वो बड़ी खुश थी, अरे तुम्हारी तो रिसर्च बड़ी अच्छी है। मैंने कहा मैंने ऑल इंडिया रेडियो सुन के ये रिसर्च आई है। तो फिर मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मुझे थोड़ा सा प्यार से डांटा, फिर बोली अभी 10 मिनट, अभी आधे घंटे नहीं मिलेंगे। फिर वो दोबारा हमने रिकॉर्ड किया।
1: मुझे लगता है कि यहाँ एक गाने की गुंजाइश बनाई जाए, तो बोलिए कौन सा गाना होगा।
0: तो मन्ना डे साहब का मेरा सबसे प्रिय जो गीत है, मेरे ख्याल से सबका ही होगा, जब हम मन्ना डे साहब के बारे में सोचते हैं, तो तू प्यार का सागर है,
1: सीमा
0: सीमा,
1: फिल्म का
0: शंकर
1: गाना।
0: जयकिशन,
1: हाँ बिल्कुल,
0: शैलेंद्र
1: जरूर। हाँ सुनते हैं ये गाना।
0: जी।

0: ये सब एडवेंचर चल रहे थे, इस बीच में मुझे ऐसा लगा कि मुझे बंबई आ जाना चाहिए। बंबई में एक टीवी चैनल था, अभी भी है, उसमें फिल्मों के स्पूफ चला करते थे, फुल्ली फालतू,
1: बिल्कुल।
0: तो वो मुझे बहुत पसंद था। वो मैं रेडियो में कर रहा था, मेरे पास एक मिमिक्री आर्टिस्ट था, मैं था, हम दोनों मिमिक्री करवर के कुछ एक
1: बना रहे
0: दस
1: थे।
0: बारह मिनट का प्रोग्राम बना लेते थे संडे के संडे। तो मुझे ऐसा लगा कि अब जो अगला कदम है वो यही है कि अब मैं वहां जाऊं, उस चैनल में जाऊं और मैं बोलूं मैं ये करता हूं। तो मैंने मेरे सैंपल्स बनाए, वॉइस ओवर्स किए, ये वो करके पैकेज करके उनको भेजा, मुझे वहां से बुलावा भी आ गया, तो मैं यहाँ आया। यहाँ आया तो जिसने मुझे बुलावा भेजा था उसने नौकरी छोड़ दी थी, तो मैं यहाँ आया और मैं भटकता रहा 3 दिन बंबई में। अब विनय पाठक को मैंने कॉल किया, विनय जी ने मुझे बुलाया, वो लोग द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो क्या करते थे, तो उन्होंने बोला यहाँ आओ राइटर्स से मिलो, वरुण ग्रोवर वो लिखा करते थे,
1: बिल्कुल उस जमाने।
0: राहुल और वरुण की जोड़ी हुआ करती थी उस टाइम, राजेश देवराज हेड राइटर होते थे, तो अब राजेश देवराज बहुत अच्छे दोस्त मित्र हैं, लेकिन उस समय उनसे मिलना नहीं हो पाया था मेरा, मैंने सिर्फ सुना था कोई देवी नाम के एक लेखक हैं जिनसे तुमको मिलाना है, लेकिन वो है नहीं यहाँ। मेरा बड़ा एक रहस्यमय ऐसा किरदार बन गया था मेरे दिमाग में, देवी कौन होंगे, बाद में मुझे पता चला राजेश से मिलने के बाद कि यही है देवी। तो और विनय सर बहुत सपोर्टिव थे, तो मतलब जरा भी मुझे दिक्कत नहीं आई, उन्होंने बुलाया, मैं स्टूडियो गया, मेरी लाइफ का मैंने पहला शूट देखा, कीकू शारदा थे वहां पे, बहुत सारे लोग थे, और मुझे लगा

0: ये जगह है जहां मुझे आना है, ये चीज मुझे करनी है। वो कभी हो नहीं पाया, कॉमेडी शो में कभी नहीं कर पाया विनय सर के साथ में। हम मिलते रहे, दो तीन चार बार मिले उसके बाद। अभी तो मुझे मुझे लगता है उनसे मिले मुझे 20 साल हो गया। तो वो सब करके मैं यहां से गया और मुझे लगा कि मुझे बम्बई चल पड़ना चाहिए, बैग पैक कर लेने चाहिए बैंगलोर से। तो बैग पैक किए, यहाँ एक दूसरा रेडियो स्टेशन था जहां से मुझे ऑफर थी और ठीक ठाक ऑफर थी, तो मैं वो छोड़ के यहाँ आ गया। और मैंने कहा मैं रेडियो करता हूँ, तो रेडियो में फिर बहुत सारी मजेदार चीजें हुई। सुनील ग्रोवर के साथ मैंने बहुत काम किया उस समय में, लल्लन नाम का एक हमारा शो हुआ करता था। वो जो सारी चीजें मैं टीवी में करना चाहता था वो मैं फिर रेडियो में करने लगा और मेरा पेट भर गया उस चीज से 4-5 महीने में। मैंने कहा अगर यही करना है तो
1: क्या
0: मजा नहीं
1: मतलब
0: आएगा।
1: है?
0: हाँ, ये वही वही सर्कल वाली बात हो गई ना कि उसी सर्कल में आप फिर से भागने लग गए, तो अब इससे ज्यादा क्या होगा। तो फिर ऐसा लगा कि मुझे एनिमेशन करने का बहुत मन था और किसी के थ्रू, एक जान पहचान के थ्रू मैं वहां पहुंचा। मुझे करीब 8-9 घंटे बाहर बिठा के रखा गया स्टूडियो के, बिठा के नहीं रखा गया बोलना चाहिए उसको, वो लोग बिजी थे और मैं बिना खाए पिए मैं बैठा रहा बाहर। और फिर वो आए, वेंकटेश गायकवाड़ नाम था उनका, है अभी भी, वेंकटेश गायकवाड़ नाम है उनका। उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था
1: हाँ,
0: वेंकटेश में, वो
1: बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर।
0: बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर। तो वेंकटेश गायकवाड़ अपने आप में एक लेजेंड, लेकिन मुझे ही नहीं पता था। तो और वो जीनियस, मतलब मैड जीनियस जो बोलते हैं ना, मैड जीनियस थे वो। तो वो रैंडमली आए, बोले कुछ खाया तूने? मैंने कहा मैंने खाया है, तो सैंडविच खाते हैं चल। उन्होंने सैंडविच खाते खाते बात की, उन्होंने बोला तू क्या कर सकता है? तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। तो वो मुंबई के साथ मेरा पहला साक्षात्कार। फिर उन्होंने बोला तू करना क्या चाहता है? मैंने कहा मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ। फिर उन्होंने मुझे और गालियां दी। उन्होंने कहा फिल्म मेकर क्या, प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है? तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, मैं लिखना भी चाहता हूँ, और मौका मिला तो प्रोड्यूस भी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरा बहुत मजाक बनाया, उन्होंने बोला ये सब हम भी चाहते हैं लेकिन हम
1: नौकरी कर रहे
0: नौकरी कर रहे हैं हम लोग,
1: हैं।
0: तू यहाँ क्या करने आया? अगर तेरा ये सपना है तो जा वहां पे बन किसी का थर्ड असिस्टेंट, उठा सबके जूते चप्पल, वहां से शुरू होती है जर्नी। हम तो ये करके आए हैं। उन्होंने काफी बड़े डायरेक्टर्स को असिस्ट किया हुआ था उस समय तक, तो ये करना पड़ेगा, ये रास्ता है। मैंने कहा ये तो नहीं हुआ मेरे से, क्योंकि रेडियो में मैं बहुत अच्छा काम करके आ चुका था, कॉमिक्स में ठीक ठाक काम कर चुका था, तो दम्भ नहीं था, गर्व था अपने काम पर। तो ये भी था कि यार ये मैं, पता नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब मैंने देखे किस तरीके से लोग असिस्टेंट डायरेक्टर्स के साथ बर्ताव करते हैं, मैंने कहा ये तो नहीं करूंगा मैं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाख चमड़ी मोटी सही लेकिन इतनी मोटी अभी भी नहीं हुई है। और हम छोटे शहर से आते हैं तो हमारा गर्व का जो परसेंटेज है थोड़ा ज्यादा भी होता है। तो मैंने कहा ये तो नहीं करूंगा मैं, तो आप बताओ क्या करना है? तो उन्होंने कहा प्रोमो बनाना जानता है तू? तो मैंने कहा जानता तो नहीं लेकिन बना लूंगा मैं। तो उन्होंने एक एनिमे आता था उस समय में, उसका मुझे एक दो तीन एपिसोड दिए, उन्होंने कहा कि इसका प्रोमो बना के लिया। तो मुझे ना एडिटिंग आती थी ना कुछ आता था, मुझे साउंड आता था क्योंकि मैं रेडियो से था। तो मैंने सबसे पहले किया कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसको मैंने अशोक कुमार की आवाज में खुद ही रिकॉर्ड किया और फिर उसके ऊपर एक एडिटर के साथ बैठ के उसको एडिट लगाया एक रात में। और दूसरे दिन सुबह मैं पहुंच गया वापस, मैंने कहा ये प्रोमो हो गया। इतनी जल्दी? मैंने कहा मुझे आना है तो मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा, अगर मैं यहां नहीं आऊंगा तो मुझे रेडियो में फंसे रहना पड़ेगा। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा एक आवाज किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। उन्होंने कहा स्क्रिप्ट किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। अरे ठीक है, तू हायर हो गया। तो इस तरीके से मैं टीवी में आ गया। बहुत बहुत घिसाई हुई टीवी में भी, ऐसा नहीं है कि चीजें आसान थी, मगर ये था कि मजा था उस काम में, बहुत मजा था। और लोग सब हम लोग जैसे ही थे, सब पागल थे, सब यंग लड़के थे और सबके दिमाग अलग अलग तरीके से चलते थे। किसी को म्यूजिक बहुत अच्छा समझता था, किसी को एडिट बहुत अच्छा समझता था, मैं थोड़ा बहुत वॉइस करता था, लिखता था, मुझे एडिट नहीं समझ में आता था। तो ये सब हम लोग एक दूसरे के पूरक हो गए। और वो किया मैंने, वो करीब 1-1.5 साल किया मैंने।
1: यहां एक गाना सुनते हैं।
0: जी बिल्कुल।

दुनिया माने बुरा तो गोली मारो, डर के जीना है कोई जीना यारो, यारो बेसदा जा करो फिदा, दुश्मन को ये पता तो दुश्मनी है।

मने बुरा तो डोली मारो, ढोल के जीना है कोई जीना यारो, यारो बेसदा जागरो फिदा, दुश्मन को ये पता तो दुश्मनी है क्या।

0: और जावेद जाफरी वाला शो कैसे आया?
1: वो तो बहुत बाद, वो तो इसके थोड़े बाद में है। तो वो उसकी भी बड़ी मजेदार सी कहानी है। तो ये करते करते क्या हुआ कि पूरी टीम बाहर चली गई और एक नया चैनल आया। इस नए चैनल में अलग तरीके की प्रोग्रामिंग थी, क्योंकि मैं प्रोमोस करता था और मैं बहुत आलसी हो चुका था तब तक। तो मैं प्रोमोस बनाना बंद कर चुका था, मैं लिखता था सिर्फ, मैं प्रोमोस लिख देता था और जाके सिर्फ एडिट चेक कर लेता था जो मेरे दोस्त बना रहे होते थे उसका। तो इन्होंने मुझे बोला यहाँ एडिट कर, यहाँ भी आ जा प्रोमो करने के लिए। तो मैं वहां प्रोमो करने के लिए गया। वहां बातचीत चल रही थी, एक वो लोग एक थ्रिलर बना रहे थे, पीरियड थ्रिलर, दरिबा डायरीज। तो दरिबा डायरीज का ये हो रहा था कि आइडिया बहुत सॉलिड था लेकिन उसकी स्क्रिप्ट उनको वैसी नहीं मिल रही थी। तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि अरे कोई थ्रिलर लिखने वाला मिल जाए तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा मैं लिखता हूँ, मैं लिख के दूँ। तब तो मैंने लिखा नहीं था थ्रिलर कोई भी।
0: ऐसी बोल दिया।
1: हाँ मतलब क्या होगा, रिजेक्ट करेंगे, उससे ज्यादा क्या है, ऑडिशन देना है ना। तो उन्होंने कहा तू लिखेगा, तू तो बच्चों का शोज वगैरह करता है, तू तो बच्चों के चैनल से आ रहा है। तो मैंने कहा उससे आपको क्या मतलब है, मैं लिख के देता हूँ, नहीं पसंद आए तो मत यूज कीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे शर्लक होम्स बहुत पसंद है, मुझे पीरियड सेटिंग बहुत पसंद है, दरिबा मुझे समझ में आता है। तो मैंने एपिसोड नंबर 16 लिखा उसका, जो उसका पायलट बना बाद में। हाँ उनको इतना पसंद आया कि उसमें कोई नोट्स नहीं था। अभी भी मैंने वो डॉक्यूमेंट मेरे पास रखा है जिसमें लिखा है कि दिस इज हाउ स्क्रीन प्ले शुड बी रिटन।
0: वाह वाह।
1: ये नोट के साथ मेरे पास वो वापस आया। वो एक्चुअली आना नहीं चाहिए था मेरे पास वापस, वो कोई बीच में एग्जीक्यूटिव था जिसने बिना पढ़े फॉरवर्ड कर दिया ये सोच के कि इसमें नोट्स होंगे। और मैंने कहा यार इसमें तारीफ आ गई है गलती से। तो अब उसके बाद उसके जो प्रोड्यूसर्स थे उनका ये था कि तू और लिख ले इसमें। तो मैंने 3 एपिसोड्स लिखे, 2 एपिसोड किसी और के लिखे हुए डॉक्टर किए, किसी एपिसोड में डायलॉग्स लिखे। तो उनको मेरा लिखा हुआ काम पसंद आने लग गया जो मैं शो के लिए कर रहा था। तो मुझसे पूछा गया कि तुम कुछ शो पिच करना चाहोगे क्या हमको। तो मेरे पास एक शो था जो मैं, वो काफी बड़ा शो था, वो या तो एनिमेशन होता या कॉमिक्स होता, लेकिन इस पर्टिकुलर चैनल में बड़े शोज बन रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है मेरे पास 2 शोज है, मैं आता हूँ आपको पिच करता हूँ। तकदीर ऐसी थी कि मैंने जो पहला शो पिच किया, हम एंटर कर रहे थे स्टूडियो में, मीटिंग रूम में, 20 सेकंड में शो चैनल ने खरीद लिया मेरे से। 20 सेकंड
0: वाह वाह
1: मैं
0: वाह।
1: अंदर भी नहीं पहुंचा था, मैं बैठा भी नहीं था। उन्होंने कहा हम लोग ये कर रहे हैं, दूसरा सुना भी मत, हम यही करते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं तो अभी सोच के चल रहा था कि 3 महीने तो जद्दोजहद में गुजरने वाले हैं, ये सारा शॉर्टकट हो गया एकदम से।
0: बिल्कुल।
1: तो मुझसे पूछा गया कि एक्टर्स कौन रहेंगे इसमें। तो मैंने एक्टर्स के नाम दिए कि ये नसीर साहब कर सकते हैं। विलन के लिए मेरे दिमाग में हमेशा जावेद जाफरी का नाम था, तो वो जावेद भाई का मैंने नाम लिया। कि तो उन्होंने बोला कि जावेद इज डूइंग अ शो विद अस, हमारे साथ एक शो कर रहे हैं जावेद भाई, लेकिन हमें लगता है कि इसको थोड़ा एडिट की जरूरत है, तू देखेगा क्या। तो इतना कॉन्फिडेंस उनको मेरे पे आ गया था। एक तो उनको ये पता था कि मैं रेडियो से आ रहा हूँ, मुझे सिनेमा समझ में आता है, मुझे पुराने फिल्म और पुराने गानों की समझ है, ये सब उनको पता था। तो मुझे उनका एक एपिसोड दिखाया गया, डिस्को डांसर का एपिसोड था।
0: बिल्कुल, वो सिनेमा की बातें कर रहे थे, प्रॉपर वही शो की बात हो रही है।
1: वही शो की बात हो रही है। तो डिस्को डांसर का एपिसोड था जो मैंने देखा, जो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे जावेद भाई के 2 शोज, एक शो उनका हुआ करता था फ्लैशबैक और एक काउंटडाउन शो हुआ करता था, ये 2 मैं देख के बड़ा हुआ था। मैं ऐसा कुछ करना चाहता था जो मैं रेडियो में कर रहा था, और
0: राइट।
1: अचानक मेरे सामने ऐसे थाली में सजा के एक शो आता है और बोलते हैं ये जावेद जाफरी कर रहे हैं, तुम क्या करना चाहोगे इसमें। तो फिर तो मैं लालची हूं, मैं सब करना चाहता था, मैं लिखूंगा भी, मैं डायरेक्ट भी करूंगा, मैं एडिट पे भी बैठूंगा, और नसीब से वो चीज मेरे प्लेट में आके गिर गई। तो मैं जावेद भाई को मिला जाके, उनको लगा ये नया लड़का है, इसको क्या ही पता होगा। तो उन्होंने कुछ बहुत ऑब्स्क्योर फिल्मों के रेफरेंस के साथ में मेरे साथ डिस्कशन शुरू किया। तो उसमें एक फिल्म है जिसका नाम है फिल्म ही फिल्म।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ उन्होंने ऐसे बात शुरू की कि राज कपूर की एक फिल्म है जिसमें एक डॉग है जो राज कपूर से बात करता है। मैंने कहा वो राज कपूर की फिल्म नहीं है, वो एक्चुअली फिल्म ही फिल्म नाम की फिल्म है जिसमें मोन्टाजेस हैं अनमेड फिल्मों के
0: राइट
1: फुटेज
0: राइट।
1: लेके।

0: तूने बोला तुमको पता है, तो मैंने मुझे पता है, मैंने देखी है फिल्म। ऐसे दो तीन बहुत भयानक अंदरूनी फिल्मों की उन्होंने बात की, वहां हमारा आइस ब्रेक हो गया। वहां उनको लगा कि
1: आता है इसको।
0: इसको कुछ तो पता है, अगर सब पता नहीं भी है तो। उन्होंने भी फिर टेस्ट दिया मुझे। धर्मवीर, मनमोहन देसाई की फिल्म है, तो उनको धर्मवीर का एपिसोड करना था। उन्होंने कहा इसका तू स्क्रिप्ट लेके आ, फिर देखते हैं। तो मैंने धर्मवीर देखी कुछ 6-7 बार, मुझे बहुत मजा आया। पहले भी देखी हुई थी। और मनमोहन देसाई साहब के बारे में मुझे पता था, मुझे बहुत सारी उस फिल्म के बारे में ट्रिविया वगैरह पता थे। तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसके साथ में थोड़ा बहुत जो एनिमेटेड जोक्स हैं वो जोक्स डाले उसमें, कि कैसे टिकर आएगा। टिकर में जब उस समय में बाघों की गिनती कम हो गई थी, 1411 बच्चे थे इंडिया में, तो उसमें वो शेर को प्राण मार देते हैं। तो हमने ऐसे काउंट डाउन रखा था कि जितने शेर मरते हैं ना, हम 1411 से कम करते जा रहे हैं ग्राफिक्स में।
1: अच्छा
0: तो
1: रहा ये
0: हाँ
1: पंच।
0: हाँ हाँ तो
1: हाँ
0: ये सब पंचेज उसमें मैंने भरे, और ये पंचेज थोड़े नए जमाने के थे ना, क्योंकि
1: बिल्कुल।
0: हाँ टिकर विकर नहीं थे पहले। वो जब फ्लैशबैक वगैरह आ रहे थे तो टिकर में ये सब मस्ती नहीं हो सकती थी, एनिमेशन नहीं हो सकता था उनमें। तो मैंने उनको बताया ये ऐसे करेंगे, फिर ये होगा, फिर वो सुमराई सोर्ड है तो हम उसका एक टेलीशॉपिंग नेटवर्क का एड बना देंगे, कि वो समुराई नहीं बोलते ना प्राण साहब, सुमराई कला बोलते हैं उसको। तो मैंने कहा सुमराई कला कैसे सीखें, रैपिड एक सुमराई कोर्स का एक हम ये बनाएंगे
1: ट्रेनिंग
0: एड।
1: कोर्स।
0: हाँ तो
1: हाँ
0: ऐसे करके मैंने उनको 5-6 गैग्स बताए कि ये गैग्स हम लोग हर ब्रेक के पहले करेंगे, तो
1: हाँ
0: एक फेक एड आएगा उसके बाद असली एड शुरू
1: असली
0: होंगे।
1: ऐड आएगा।
0: हाँ तो उनको आइडिया जम गया, वो आइडिया मेरे लिए लैंडमाइन साबित हुआ, क्योंकि वो आइडिया उनको इतना जम गया कि वो अब हर एपिसोड में हमें करना पड़ता था। तो वो किसी एपिसोड में मिलते हैं ब्रेक के बाद था ही नहीं हमारे शो में, 26 एपिसोड में, 26 एपिसोड, हर एपिसोड में 4 ब्रेक्स, तो 100 ऐसे एड्स
1: लिखने थे।
0: इन आउट इन आउट, तो 200 एड्स हमने बनाए। तो वहां से उस शो की शुरुआत हुई। फिर वो शो मैंने लिखा भी, को डायरेक्ट भी किया, एडिट भी किया, उसके साथ ग्राफिक्स भी किए, उसमें एनिमेशन भी किया, VFX भी किया। मतलब उस शो में शायद ही सेट में झाड़ू भी लगाई है। तो उस शो में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मेरा हाथ नहीं लगाओ। और वो करते करते एक मतलब जावेद भाई के लिए मन में एक बहुत रेस्पेक्ट तो है ही, लेकिन वो एक रेस्पेक्ट के साथ साथ ना प्यार भी बहुत बढ़ा, क्योंकि
1: बिल्कुल।
0: उनको बतौर इंसान जाने का मौका मिला। और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि वो भी, मुझे लगता है कि मुझसे उतना ही प्यार करते हैं, छोटे भाई के जैसा मुझे हमेशा वो ट्रीट करते हैं। मेरे एक कॉल पे वो मेरे लिए कहीं भी खड़े हो जाते हैं आके। तो वो जो एक रिश्ता बना मेरे ख्याल से उस शो से बना, वो
1: बिल्कुल।
0: शो बनता रहा बनता रहा 1.5 साल तक। तो 1.5 साल तक मेरे ख्याल से मैं मेरे घर में कम रहा हूं और उस सेट पे ज्यादा रहा हूं। तो इस तरीके से ये शो बना। ये शो बनते बनते उस चैनल के साथ ये हुआ कि उनके बजट्स खत्म हो गए, तो जो मेरा शो उन्होंने खरीदा था वो तो बना नहीं। हाँ मैंने उनसे वापस खरीदा, जो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे मैंने उनको वापस किए और शो वापस खरीदा, क्योंकि मैं वो शो कहीं छोड़ना नहीं चाहता था। और मेरा ये भी मानना रहता है कि चीजों को लीगली लॉफुली ठीक से क्लीन करके उनको क्लोज करना चाहिए, उनको लटकने नहीं देना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ हम जो राइटर्स हैं और जो क्रिएटर्स हैं वो अपनी क्रिएटिविटी में इतना उलझे होते हैं ना, कि वो लीगैलिटीज को नहीं समझते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और
1: वो
0: कानूनी दांव
1: लूज
0: पे
1: एंड
0: जो
1: छूट जाते
0: वो
1: हैं जो
0: लूज
1: बाद
0: एंड्स
1: में
0: ऐसे
1: बहुत
0: ऐसे
1: भारी पड़
0: टूटते
1: जाते
0: हैं
1: हैं।
0: जो बाद में अपना मतलब आप दो लोगों के बीच ऐसी कड़वाहट है जिसका कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो हमेशा ये अच्छा है कि आप जाएं और उस लूज एंड को बंद कर दें, या
1: बिल्कुल।
0: तो आपके हाथ में हो या सामने वाले के हाथ में हो, मन में कड़वाहट ना रहे, रिश्ते बने रहें। तो मैंने वो चैनल के पास जाके उनसे वापस खरीदा, वो उनको पैसे वापस किए। जावेद भाई के साथ मैंने फिर दूसरा शो किया, तो दो शोज हमने किए। उसके बाद काफी काम किया हमने साथ में। ये करते करते एनिमेशन तो चल ही रहा था, तो एनिमेशन में मैंने बहुत काम किया, बहुत इन द सेंस कि बहुत वो शोज किए जिन पे मुझे बहुत गर्व है। तो वो कुछ 3-4 साल का एक कालखंड है जिसमें मैं विविध भारती भी आता था वाणी कोर्स करने, और एक फैंटेसी शो था जिसमें मैं क्रिएटिव डायरेक्टर था, जावेद भाई का एक शो था और 2 एनिमेटेड शोज थे। तो टाइम ही नहीं होता था, मैं घर पे ही नहीं होता था। और मतलब ये पर्सनल बात है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो क्रिएटिव लोग हैं कई बार पागल हो जाते हैं, क्योंकि जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिल रहा होता है, उस चक्कर में अपने स्वास्थ्य का वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो मुझे इस बीच स्ट्रेस लेवल्स, नींद बराबर नहीं हो रही है, आराम बराबर से नहीं हो रहा है, लगातार भाग दौड़ है, खाने का कोई ठिकाना नहीं है, समय का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे बहुत कम उम्र में डायबिटीज हुई इस वजह से, क्योंकि काम इतना

0: चीजें इतनी हो रही थी चारों दिशाओं में आप भाग रहे थे कि अपने लिए समय नहीं था। और मुझे लगता है कि क्रिएटिव लोगों को अपने लिए समय निकालना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य है जो आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। प्रोजेक्ट्स क्या हैं,
1: बिल्कुल
0: वो आते हैं और जाते हैं।
1: यस सही बात है। बहुत देर से हम बात कर रहे हैं और गाने नहीं सुने। बातचीत को यहां पर रोकते हैं आलोक, और एक गाने की जगह बनाते हैं। चूंकि जावेद जाफरी का जिक्र चल रहा है, तो एक ही गाना है जो जावेद जाफरी की सबसे बड़ी पहचान है,
0: उनका पहला गाना
1: मेरी जंग का।
0: मेरी जंग का, मेरे ख्याल से उससे पहले डांसिंग सिंगिंग विलन कोई आया ही नहीं था मेरी जंग के
1: बिल्कुल
0: पहले।
1: बिल्कुल
0: तो बोल बेबी बोल
1: वो सुनते हैं।
0: जी।
1: Welcome, friend, to the show that never ends. I've taken the chance to make you dance. You will move your feet and groove the beat. So then, which beat would you like? Dosto, kaun sa dance pasand karenge aap? Rumba?
2: No!
1: Samba?
2: No!
1: Rumba,
2: no.
1: Samba,
2: no.
1: Tequila,
2: no.
1: Tango,
2: no.
1: Charleston,
2: no.
1: Polka,
2: no.
1: No?
2: No.
1: To phir kya ho? One, two.

Gott, was ein Mut. Wo sind die Boden? Ranke!

0: आलोक, ये तमाम चीजें चल
1: जी
0: रही थीं और जाहिर है कि उसके बाद काम आगे बढ़ा, तो आगे के कुछ महत्वपूर्ण कामों के बारे में बताइए।
1: शोले की 40वीं वर्षगांठ थी 2015 में। मुझे शोले के एनिमेटेड वर्जन पर काम करने मिला, जिसका मैं क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी था और राइटर भी था, और कुछ हिस्से मैंने डायरेक्ट भी किए थे। मेरे लिए ये बड़ा खुशी का सबब था। ये फिल्म मेरी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है, और जब इसका प्रमोशन शुरू हुआ इस एनिमेटेड फिल्म का, तो कई जगहों पे सलीम साहब का एक छोटा सा कोट है, फिर जावेद साहब का एक छोटा सा कोट है, उसके आसपास मेरा एक छोटा सा कोट है,
0: वाह
1: तो वो
0: वाह।
1: मेरे लिए बड़ा, उसको बोलते हैं किक, तो मेरे लिए बड़ी किक थी वो देखना। ये करते करते मैंने ग्राफिक इंडिया ज्वाइन किया, जहां मुझे सबसे पहला जो शो मिला वो था अमिताभ बच्चन साहब का पहला एनिमेटेड शो,
0: वाह वाह।
1: जो मैंने डेवलप भी किया, लिखा भी, डायरेक्ट भी किया, प्रोड्यूस भी किया। वो करते करते मुझे अमित जी के साथ काफी समय बिताने का मौका मिला। मैंने करीब उनके साथ 3 से 4 महीने डबिंग किए, और जो चीज मुझे वहां से सीखने को मिली, वो मैं अभी भी कोशिश करता हूं कि मेरे साथ रहे, वो है समय का पाबंद होना।
0: जिसके लिए वो बहुत मशहूर है।
1: बहुत ज्यादा वो 6 बजे की रिकॉर्डिंग सुबह करते थे, 5:55 वो स्टूडियो पे होते थे, तो हम
0: गजब।
1: लोगों को भाग के समय पे पहुंचना पड़ता था। अगर उन्होंने 6 बोला है तो 5 मिनट पहले ही पहुंचेंगे, वो 6:01 पे कभी नहीं आए
0: बिल्कुल।
1: इतने महीनों में। दूसरी चीज है जो उनकी अपने काम के प्रति लगन है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग ये बात बार बार बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक बिल्कुल अलग तरीके का अनुभव था कि मैं बच्चन साहब के सामने कुछ भी नहीं हूं, लेकिन अगर मैंने उनसे 7, 8, 9, 10 टेक भी मांगे हैं, तो मुझे 10वां टेक तक मिला है।
0: वाह वाह।
1: उन्होंने कभी सवाल नहीं किया कि क्यों मांग रहे हो। हाँ, ये बोला है कई बार कि मुझे एक बार बता दीजिए आपको कैसा चाहिए, तो मैं, आप मुझे बोल के बताइए, मैं एग्जैक्टली वैसा बोल के बता दूंगा। तीसरी चीज जो मैंने वहां सीखी वो ये थी कि जितने टेक्स फाइनल होते थे, अब तो डिजिटल है तो आप टेक्स को फाइनल मार्क कर लेते हैं, लेकिन बच्चन साहब एनालॉग स्क्रिप्ट के ऊपर में लगातार लिख रहे होते थे कौन सा टेक मैंने फाइनल बोला है, सिक्स्थ टेक, सेकंड टेक, फर्स्ट टेक।
0: वाह
1: जब
0: वाह।
1: डबिंग खत्म हुई, उन्होंने मुझे पूरे स्क्रिप्ट का ऐसा पुलंदा दिया, उन्होंने कहा कि इसमें सारे टेक्स लिखे हुए हैं। मैंने कहा सर हम मार्क कर रहे थे। बोले फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, गलती की गुंजाइश ना रहे।
0: गजब।
1: तो उतना डिटेल रखना। चौथी चीज जो मुझे बहुत पसंद आई वो ये थी, पहली बार मुंबई में मेरे से किसी ने देवनागरी में स्क्रिप्ट मांगी थी।
0: वाह वाह वाह वाह। वरना हम
1: सब
0: अपने
1: सब सब
0: सुनने वालों
1: रोमन
0: को
1: सब
0: बता
1: रोमन
0: देंगे,
1: में
0: सब
1: पढ़ते
0: लोग
1: हैं,
0: रोमन
1: सब
0: में
1: रोमन में
0: मानते हैं।
1: पढ़ते हैं।
0: जी
1: बच्चन साहब ने देवनागरी में मांगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मेरे संवाद हैं वो देवनागरी में होंगे, तो मैं बेहतर तरीके से पढ़ के बेहतर तरीके से अदा कर सकता हूँ। वहाँ एक बहुत अच्छी चीज हमारे साथ ये हुई कि उन्होंने पहले 2 दिन जब डबिंग कर ली, उसके बाद वो बाहर निकलते निकलते उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ के नहीं है, तो मैंने कहा हाँ मैं यहाँ का नहीं हूँ लेकिन बहुत सालों से यहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ के नहीं है, क्योंकि मुझे हिंदी में कोई भी वर्तनी में त्रुटि नहीं मिली है। तो वो
0: क्या बढ़िया
1: एक
0: बात।
1: बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था हमारी टीम के लिए, हमारे

0: लिए। मेरी सिस्टर ने ये सारी देवनागरी में ये संवादों को देवनागरीकरण किया था रोमन से। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं अगर देखें तो, लेकिन ये इतनी छोटी चीजें हैं नहीं। तो ये सीखने की चीज थी। एक समय था जब मैं 11 बजे की मीटिंग के लिए घर से 11:30 बजे निकलता था लेकिन एक बार अमित जी के साथ ये पूरा शो करने के बाद मुझे नहीं लगता मैं कभी भी समय पे नहीं पहुंचने वाला काम कर रहा हूं। मैं आमतौर पे कोशिश करता हूं या तो मैं समय पे पहुंच जाऊं या मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले लोगों को बता दूंगी मैं समय पे नहीं पहुंच पाऊंगा। पहले बहुत बहुत केयरलेस था मैं। तो ये चीजें आप देखें तो यही चीजें हैं जो इन लोगों को इतना बड़ा बनाती हैं। और मैं जैसा मैं कह रहा हूं कि ये सब क्लिशे है, सब 1000 बार आपने ये चीजें सुनी होंगी, लेकिन मेरे लिए वो वन ऑन वन पर्सनल चीज है जो उनसे सीखने की थी।
1: ऑफ कोर्स।
0: तो वो किया हमने। अस्सा फोर्स नाम था उस शो का, साइंस फिक्शन था और बहुत अच्छा उस पे हमें रिस्पांस मिला। उसके बाद दूसरा शो जो हमने किया वो SS राजामौली के साथ किया। मतलब बाहुबली आई थी तब, पहली बाहुबली आई थी, वो दूसरी बना रहे थे। तो हमने उनको एक एनिमेटेड शो पिच किया कि दोनों बाहुबली के बीच में एक एनिमेटेड शो आ जाएगा तो लोगों के बीच में वो एक
1: बनी
0: उत्साह बना
1: रहेगी।
0: रहेगा माहिष्मति के बारे में। तो वो भी एक सीखने वाली बात थी कि हम जब पहुंचे तो राजामौली साहब ने हमको 3 घंटे का समय दिया था और वो 11 बजे आने वाले थे। वो .11 बजे आए। उन्होंने बाथरूम स्लीपर पहनी हुई थी, एक हल्की सी टी शर्ट पहनी हुई थी जो अगर आप देखें तो नितांत साधारण कपड़ों में स्लीपर पहन के वो अंदर आए, जिन्होंने 1.5 साल पहले देश की सबसे बड़ी हिट फिल्म डायरेक्ट की थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: पूरे धूल में सने हुए थे वो, क्योंकि वो कोई तो एक्शन सीन देखने गए हुए थे और वो पूरा सेट का जायजा लेकर आए थे। उनके पिताजी थे वहां पे और वो दोनों तेलुगु में बात करते थे, फिर राजामौली साहब हम लोगों को ट्रांसलेट करके बताते थे। फिर उनको पता चला कि मुझे कॉमिक्स बहुत पसंद है, तो उन्होंने बोला इधर आओ इधर आओ मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ। तो उन्होंने अपने
1: वाह
0: फोन पे मुझे अमर चित्रकथा के कुछ पैनल्स दिखाए जिनमें से डायलॉग्स उन्होंने बाहुबली में इस्तेमाल किए थे और कुछ डायलॉग्स वो आगे बाहुबली में इस्तेमाल करने वाले थे। उसमें एक शिवाजी का डायलॉग है छत्रपति शिवाजी महाराज पे जो अमर चित्रकथा है, उसके दो संवाद थे, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो वो उस दिन मुझे पता चला कि राजामौली असल में बहुत बड़े कॉमिक बुक फैन है। तो वो एक जो चीज थी उस चीज ने हमारे बीच का जो आइस ब्रेकिंग था बहुत ईजी कर दिया। तो वही है जैसे अरेबियन नाइट्स में होता है, आप छोटी छोटी चीजें करते चलते हैं और वो आगे जाके
1: बड़ी
0: जर्नी
1: हो
0: में कहीं
1: जाती है।
0: कहीं काम आती हैं। तो
1: बिल्कुल
0: ये जर्नी में ऐसा लग रहा था कि कॉमिक्स कहीं छूट रही है, मगर फिर कॉमिक्स इस तरीके से वापस मेरे जीवन में आ जाया करती थी। तो इसकी वजह से हमें वो शो करने को मिला। हमने वो शो किया, पहला सीजन मैंने डेवलप करने में को डेवलप किया था लोगों के साथ में। इसके बाद कुछ और एनिमेशन की चीजें हुई। एनिमेशन छोड़ के फिर मैं बाहर आया। मैं एनिमेशन से थोड़ा सा एक रास्ता आ गई थी एनिमेशन में, तो मैं उससे बाहर आना चाहता था। दूसरी चीज थी कि मैंने मेरे जो हीरोज हैं जिनके साथ काम करने का एक सपना होता है हमारा, वो मैंने करीब करीब पूरा कर लिया था। मैंने राजामौली साहब के साथ काम कर लिया है, अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम कर लिया, स्टैनली के साथ काम कर लिया है। तो अब इससे बड़ा क्या, या तो इससे बड़ा कुछ हो,
1: बिल्कुल।
0: शोले कर ली थी तो इससे नीचे जाने का कोई मतलब
1: मतलब
0: नहीं
1: नहीं।
0: बनता था। तो मुझे लगा कि अब इंडस्ट्री बदलनी चाहिए मुझे, नहीं तो फिर वही हो जाएगा, फिर मैं वो साइकिल में दौड़ता रहूंगा। तो मैंने लाइव एक्शन में हाथ आजमाना शुरू किया। मैं निर्देशक बनना चाहता था तो मैंने कहा कि मैं निर्देशन करूंगा। इस बीच मैंने एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी बहुत पहले, तो वो फिल्म की स्क्रिप्ट घूम रही थी स्टूडियो स्टूडियो। वो 2018 के आसपास एक स्टूडियो ने ले ली और उन्होंने बोला इसको वेब सीरीज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक मिडिल क्लास ह्यूमर था। मुझे ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फिल्में बहुत पसंद है, तो ये उस स्पेस में था और समय तक कोई मिडिल क्लास ह्यूमर कर नहीं रहा था, तो बहुत रिस्की माना जाता था ये। अब तो क्या है कि बहुत सारे शोज आ गए
1: ज्यादा
0: हैं,
1: हो रहे
0: बहुत सारी
1: हैं।
0: चीजें आ गई हैं, उस समय में बहुत रिस्की माना जा रहा था। और तकदीर से मुझे वो डायरेक्ट करने भी मिला और मुझे कुछ मेरे बहुत पसंदीदा एक्टर्स हैं जिनको डायरेक्ट करने मिला मुझे, तो मैंने डायरेक्ट किया। फिर मुझे लगा कि और वो हुआ क्या कि मेरे डायरेक्ट करते करते मैं वो सीरीज जो है पहले 6 एपिसोड की थी, फिर उन्होंने उसको 12 बना दिया, फिर उसको 24 कर दिया। अब 24 एपिसोड मैं लिखूं भी और डायरेक्ट करूं वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो पहले 6 एपिसोड करके मैंने वो सीरीज लिखी और धीरे धीरे करके मैं लाइव एक्शन की तरफ मुड़ने लगा।
1: इस सीरीज का क्या नाम था?
0: इस सीरीज का नाम है बब्बर का टब्बर। नाम क्योंकि मैंने नहीं दिया है तो आप मुझे जज ना करें
1: ठीक है। इन दिनों क्या चल रहा है?
0: इन दिनों एक शो है जो मैं लिख रहा हूं, लिमिटेड शो है 5 एपिसोड का, वो लिख रहा हूं।

0: एक फिल्म लिखी है जो एक बड़े स्टूडियो ने ले ली है। एक फिल्म मैं खुद डायरेक्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे ख्याल से 1 महीने के बाद मैं उसको लिखना शुरू करूंगा, मगर उसकी कहानी मेरे पास है तो मुझे मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा समय मुझे उसको लिखने में लगेगा। एक कॉमिक्स अभी अभी खत्म किए करके जो अभी मुंबई में लॉन्च हुई थी, वो एक फिल्म पर बेस्ड कॉमिक है। वन नाम की एक फिल्म आ रही है, तो उसका एक स्पिन ऑफ कॉमिक है वो, तो वो काफी बढ़िया लॉन्च हुआ अभी पिछले हफ्ते। मैं चाहता हूँ इस साल मैं 2 किताबें और करूँ।
1: अच्छा।
0: हाँ, एक मेरी कॉमिक है जो किसी भी समय इस साल आ जाएगी, वो बन के रेडी है। हाँ, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जुलाई अगस्त तक आ जाएगी वो किताब। इसके अलावा मुझे पता नहीं, कुछ और छूट रहा हो तो
1: यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: मुकद्दर का सिकंदर
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: टाइटल ट्रैक, कल्याण जी
1: बोलिए
0: आनंद जी हिंदी वर।
1: क्या बात है, क्या बात है, ये गाना सुनते हैं।

0: आलू, क्या आपको लगता है कि कॉमिक्स का दौर अब बहुत सुनहरा दौर बीत चुका है?
1: जो मेरे अंदर का कॉमिक्स प्रेमी है वो इसको कभी नहीं मानेगा। लेकिन कॉमिक्स या किसी भी मीडियम का दौर मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीतता है। ये एक साइकिल है, चक्र है, तो ये खत्म होता है और फिर आता है। तो जैसे भारत में जो फैंस थे उन्होंने अपने या तो पब्लिकेशन शुरू किए हैं या किताबें बनानी शुरू की हैं। हम भी उनमें से एक हैं, हमने भी अपनी एक कॉमिक बुक कंपनी शुरू की है। तो उसमें आइडिया ये था कि हम वो किताबें करेंगे जो हम पढ़ना चाहते हैं, और हमें पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिल रही हैं फिलहाल, तो वो कर रहे हैं। हम बच्चों के लिए किताबें कर रहे हैं और बहुत अच्छा रुझान है। और एक दूसरी चीज जो कॉमिक्स के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकती है वो है कॉमिक्स का अडेप्टेशन शोज में, फिल्म्स में, एनिमेशन शोज में। और मुझे लगता है कि वो दौर हमारे यहाँ करीब करीब आ चुका है। अगर अमेरिका भी देखें तो मार्वल या डीसी को अपनी पहली फिल्म बनाने के पहले, सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है, 77 या 78 में, तो करीब 40 साल लगे हैं, है ना। स्पाइडरमैन 1963 या 62 का है, 63, और पहली स्पाइडरमैन 2002 में आई है। तो इतना समय तो लगता है, 40 साल का समय तो लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा कॉमिक्स उद्योग है वो अपने 40वें वसंत में प्रवेश कर चुका है करीब करीब। तो अब दो चीजें हैं, एक तो जो अब नए फिल्म मेकर्स हैं या जो नए क्रिएटर्स हैं, ये वो लोग हैं जो ये कॉमिक्स पढ़ के आए हैं,
0: बिल्कुल
1: वो फैंस हैं पहले, क्रिएटर्स बाद में। बहुत लोगों का ऐसा है कि उनका सपना है कि एक नागराज पे कॉमिक बने या डोगा पे कॉमिक बने,
0: बनते
1: चाचा
0: बनते
1: चौधरी
0: रह
1: पे
0: जाती
1: शोभा।
0: है,
1: हाँ,
0: मतलब कई बार
1: डोगा
0: अनाउंस
1: डोगा
0: होता है।
1: डोगा की तो मैंने भी लिखी है फिल्म, एक ड्राफ्ट तो मैंने भी लिखा है। हाँ, तो वो बनी नहीं, लेकिन चाचा चौधरी पे शो बन गया है। लेकिन चाचा चौधरी पे मुझे लगता है कि फिल्म बन सकती है। चाचा चौधरी और राका बहुत अच्छे किरदार हैं जिन पे कुछ बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिन पे मुझे लगता है कि चीजें आज नहीं तो कल बननी शुरू हो जाएंगी। मेरी जनरेशन तो ये फिल्में देखेगी।
0: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया।
1: तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि दौर चला गया है। मुझे ये लगता है कि इस मीडियम को थोड़ा सा इवॉल्व होने की जरूरत है। जो इवॉल्व वो हो रहा है, बस ये कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का
0: दौर
1: जो
0: है
1: दौर है।
0: बिल्कुल। तो हम उम्मीद करें कि ये चीजें जल्दी सामने आएंगी। आलोक, बहुत अच्छा लगा आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और हमसे इतनी सारी बातें की।
1: शुक्रिया यूनुस भाई, मैं जैसा कह रहा हूँ कि ये मेरे लिए एक अलग तरीके का मोमेंट हो गया है, क्योंकि मैं स्कूल में था तब से मैं आपको सुनता आ रहा हूँ, आपसे मिलना भी होता रहा है। मैं यहाँ
0: बिल्कुल।
1: आके मैंने वाणी कोर्स भी किया है। तो मेरे लिए घर वापसी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हाँ, और क्या कहूँ मैं,
0: बहुत बहुत
1: शुक्रिया
0: शुक्रिया, फिर मिलते हैं।
1: जी।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
3: आज के मेहमान।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश

जी श्रोतियो, अज दा प्रोग्राम अखर बोलदे ने लैके मैं हाजिर हां तुहाडी अपने रेडियो दोस्त दे प्रोग्राम दी होस्ट सुखजीत ते मेरे वल्लों सारे ही श्रोतियां नूं प्यार भरी नमस्कार। ते साडा इस वार दा विशा होएगा जिंदगी दी सार्थकता।

0: हाँ जी श्रोतियो, इस खूबसूरत गीत दे नाल ही साडे नाल स्टूडियो दे विच जुड़ चुके ने साडे नवे कालर। गल करदे आं उन्हां दे नाल, सुणदे आं उन्हां दीआं गल्लां ते उन्हां दी पसंद दे गीत बारे। हैलो,
1: हाँ जी, हेलो।
0: हाँ जी हैलो।
1: हाँ जी, सरदूर सिंह मेरा नाम है, पिंड चौना पजारियां है। गीत गूत में लिख लेना, एक मेरा चाचा गुरचरण चहल है, बहुत पुराने सोचा जी, मेरा मसे मोबाइल लग्या, उमरे टप जाने मोबाइल लगते ही जी।
0: स्वागत है जी।
1: धनवा
0: फिर तो
1: गुरदेव
0: थोड़ा
1: जी, गाना
0: बहुत
1: सुना दो,
0: ही
1: खाली घोड़ी हिड़क गई उतना देगा तीर। धन्यवाद जी थोड़े।
0: जरूर जी, तुहाडी पसंद दा जरूर गीत सुनावांगे। बड़ा ही मैनूं लगदा तुहाडा दिल दुख नाल भरिया होया सीगा, जिहड़ा तुसीं लगातार
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ
0: अपने जिहड़े अरमान कढ रहे सीगे मूंह चों। ते थोड़ा जिहा रेडियो तों परे हो जाओ, तुहाडी आवाज़ थोड़ी जी अलग जी आ
1: जी।
0: रही है।
1: नहीं जब रेडियो घटा दी, आवाज घटा दी, पुराना चौथा मेरे को चौथा बंद मरे रिया।
0: अच्छा जी। अच्छा, रेडियो भी नाल नाल नवे नवे रख दोगे, नवे नवे डिजाइना दे।
1: हाँ जी, ये तो बहुत कुछ मिलता जी, बड़े गाने लिखे, ये तो गल्ला कर कर मैं बड़े गाने लिखे जी, बड़े
0: अच्छा जी,
1: ये तो बहुत कुछ मिलता जी। मैंने हो गए 85 का सुनता, 1985 का।
0: बहुत वधिया गल है जी। तुसी इन्ने लंबे समय तो रेडियो दे नाल जुड़े हुए होंगे,
1: हाँ
0: तां
1: जी, हाँ जी,
0: फिर साडा हक बनता है
1: क्यों ना
0: असी
1: पजा या
0: तुहाडी
1: मेरा पिंड
0: पसंद दा
1: है,
0: गीत
1: एफएम
0: तुहानू
1: बठिंडा
0: जरूर
1: रेडिया मेरी
0: सुनाइए।
1: जिंदा।
0: सुनते हैं जी तुहाडी पसंद दा गीत।
1: धन्यवाद जी,
0: फोन
1: धन्यवाद, सुना
0: रखो
1: दियो।
0: ते गीत सुनो।

0: हेलो।
1: हेलो भैन, सत श्रीकाल। मैं
0: हाँ जी, कौन गल कर रहे हैं?
1: चरणजीत करदा जी, जिला फरीदकोट पिंड बंदे चंद। चरणजीत
0: हेलो।
1: करदा जी गलबात। हेलो
0: हेलो।
1: हेलो हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हो?
1: मैं चरणजीत बोल रहा जी, जिला फरीदकोट पिंड बंदे चंद। हेलो भैन, थोड़ी मेरी आवाज नहीं थोड़े को आउंदी।
0: हेलो।
1: हेलो
0: हेलो।
1: भैन, हेलो
0: साडे श्रोतिया नाल साडा फोन है जी, जिहड़ा वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। पर उस तो पहला उन्होंने अपनी पसंद आई गीत दसिया, जो असीं तुहानूं जरूर सुनावांगे।
2: क्यों।

0: हुण तुम बेदीदार न बोले
1: हस के करे दीदार न बोले
0: हुण तुम बेदीदार न बोले
1: हस के करे दीदार न बोले
0: आंदे जांदे राइयां दी हुण कढ़दी फिरी पछाण कुड़े
1: हाय तुम।

0: तिर जवाब सुनने तो झिझक रही है ते बहस तो बच रही है। श्री रिजिजू ने संसद के कामकाज विच विरोधी धिर के संसद मैंबरों वालों किए जा रहे विघत से आपने डूंगी नाराजगी प्रकट की थी।
1: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ऑपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है क्योंकि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ऑपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय व्यापार ते सनत मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इंडिया ट्रेड फेस्टिवल का उद्देश्य पुलाड़ टेक्नोलॉजी ते रक्षा समेत वक् वक् खेत्रों विच भारत दीआं वधदीआं समर्थावां दा विखाला करना है जिस नाल देश दी स्वैनिर्भर भारत वल तरक्की नूं तेज कीता जा सके। श्री गोयल ने एक कल नवी दिल्ली विच इंडिया ट्रेड फेस्टिवल 2026 दे उद्घाटनी समारोह नूं संबोधन करदिआं कही। इस मौके ते व्यापार ते सनत राज मंत्री जितन प्रसाद ने कहा कि टेक्नोलॉजी ते व्यापार भारत दी विकास यात्रा दे दो मुख थंब ने। अपने संबोधन विच पीयूष गोयल ने कहा कि नौ मुक्त व्यापार समझौते नाल भारतीय सनत ते कारोबारा लई बाजार खोले गए ने।
1: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये 4 ट्रिलियन डॉलर की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के मनाएंगे तब ये 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली है।
0: सरकार ने सोशल मीडिया से चल रहे उस पत्र का खंडन किया जिस विच दावा किया गया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तहत मामूली रकम से सीधे कर्जे दिते जा रहे ने। प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी की तत् जांच इकाई ने कहा कि पत्र जाली है। इकाई ने अगे भी कहा कि मुद्रा योजना व्यक्तियां जां सूक्ष्म उद्यमियों नु सीधे कर्जे प्रदान नहीं करती है। पीआईबी ने नागरिकां नु प्रमाणिक जानकारी लिए अधिकारित हल्कियां ते भरोसा करने की अपील की। केंद्रीय सेकेंडरी सिक्ख्या बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं जमात की पूरक परीक्षा 2026 के नतीजे ऐलान दिए ने। विद्यार्थी डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in ते अपने नतीजे देख सकते ने। आयुष मंत्री प्रताप राव यादव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक म्यारी पहल का उद्देश्य रवायती दवाइयां की गुणवत्ता ते भरोसेयोगता नूं मजबूत करना है। वो अज एक जड़ी बूटी एक म्यारी पहल के लागू करने नाल संबंधित समझौते के नवीनीकरण मौके बोल रहे सन। श्री यादव ने कहा कि यह पहल भारत की अमीर जैव भिन्नता ते रवायती दवाइयां के विरसे की रक्षा विच योगदान पाएगी। भारतीय तलवारबाजी टीम ने आज नाइजीरिया के लागोस विखे राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप के तीजे दिन वक्-वक् सीनियर व्यक्तिगत मुकाबले विच सोने के 3 ते चांदी ते कांसी का एक एक तमगा जितया। भारतीय टीम के तीजे दिन की शानदार कारगुजारी नाल देश के कुल तमगियां की गिनती 29 हो गई है जिस विच सोने के 8 चांदी के 7 ते कांसी के 14 तमगे शामिल ने। भारत ने सीनियर औरतों की फॉयल श्रेणी विच सोने ते चांदी दे तमगे जिते। कनक लक्ष्मी ने सोने का तमगा हासिल किया जदों की टीम की साथी जोइस आशिता ने चांदी का तमगा जितया। सीनियर मर्दा दे एपी मुकाबले विच सफलता जारी रही जिथे राजेंद्रन शांति मोल शेरजिन ने दिन का दूजा सोन तमगा जितया। शेरजिन ने दक्षिणी अफ्रीका के क्रूगर पीटर नूं पछाड़ दिता जिसने चांदी का तमगा जितया। सीनियर मर्दा दे सैबर मुकाबले विच करण सिंह ने फाइनल मुकाबले विच भारत लई दिन दा तीजा सोन तमगा जितया। टीम दे साथी कुमारेसन पदम गिशो निधि ने नाइजीरिया दे अकीन योसोए उलू वाफू वालेसी दे नाल कांसी दा तमगा हासिल कीता। आखिर विच बुलेटिन दियां खास खास खबरां एक बार फिर। संसद दियां दोवां सभावां ने अज विदेशी योगदान नियम सोध बिल 2026 नूं होर जांच लई सांझी संसदी कमेटी नूं भेजण लई आपने प्रवानगी दे दित्ती है। संसद वल्लों राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सोध बिल 2026 भी पास। लोक सभा वल्लों खाणां ते खनिज विकास ते नियम बद्दी सोध बिल 2026 नूं मंजूरी मिली। सूचना ते प्रसारण राज मंत्री डॉ एल मुरगन ने कहा कि जाली खबरां दा मुकाबला करन लई प्रेस सूचना विरोधी तत् जांच इकाई कायम कीती गई है। केंद्रीय सेकेंडरी सिक्ख्या बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं जमात की पूरक परीक्षा 2026 के नतीजे ऐलान दिए ने। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म होंदा है। साडा अगला राष्ट्रीय बुलेटिन सवेरे 8:30 होएगा। नमस्कार।
2: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫ ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਾਗ।

0: प्रोग्राम शाम सुहानी।
1: हुणे तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम शाम सुहानी FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते। तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी बठिंडा दे प्रसारण स्टूडियो दी कड़ी ते। समा हो रहा जी 7:59। हुण पेश है NCERT वलों प्रायोजित प्रोग्राम उमंग। अज तुसी इस दा 1348वां भाग सुनोगे।

0: हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं एक सुंदर सुविचार जिसे हमें भेजा है प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
3: लिखते हैं, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, इसलिए सुख में विनम्र रहें और दुख में धैर्य रखें, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम।

0: मैं हमेशा बदलता रहता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी का।
0: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है,
1: नमस्कार, उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में आप जिस विषय की जानकारी को समाहित करते हैं उसका पूरा इतिहास अच्छे से सरल शब्दों में समझाकर बताते हैं जिसे बच्चों को भी समझ में आ सके। 13 से 17 जुलाई वाले सप्ताह में आपने पुस्तकों के उद्भव और विकास की कहानी को व्यापक जानकारी देकर बताया। इसी सप्ताह आपने मानसून, अरावली की कहानी और हिमालय की उत्पत्ति पर संग्रहणीय भौगोलिक जानकारी दी। पूरी उमंग टीम को हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। संग संकारा सोमनी, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
1: रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास कृष्ण कुमार यादव और बल्लू निषाद।
0: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
1: आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि संदेश भेजते रहिए और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से।
0: जी, ये भी जानिए श्रृंखला की इस कड़ी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम या भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए कुछ ऐसे लोगों की
1: जिन्हें महात्मा गांधी और अन्य प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की तरह नाम और प्रसिद्धि तो नहीं मिली लेकिन उनका योगदान भारत को स्वतंत्र कराने में किसी से कम न था।
0: उन गुमनाम और कम चर्चित लोगों में से आज हम जिनकी चर्चा करेंगे उनका नाम है पिंगली वेंकैया। बहुत कम हैं जो इस नाम को जानते हैं। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि वो पिंगली वेंकैया ही थे जिन्होंने हमारे प्यारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन किया था।
1: श्रोताओं, उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी, कृषि वैज्ञानिक, भाषा विद्वान और भूविज्ञानी थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद उन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया और महात्मा गांधी के संपर्क में आए।
0: वे ब्रिटिश भारतीय सेना में थे और उन्हें बहुत बुरा लगता था जब ब्रिटेन के झंडे को एक भारतीय सैनिक की हैसियत से उन्हें सलामी देनी होती थी। उन्हीं दिनों में उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागृत हो गई कि भारत का भी अपना राष्ट्रीय ध्वज हो। समय बीता, वे गांधी जी के संपर्क में आए और स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए।
1: जब राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात आई तो इसके लिए पिंगली वेंकैया जी को ही चुना गया। लगभग 5 वर्षों तक उन्होंने दुनिया भर के झंडों का गहरा अध्ययन किया और करीब 30 डिजाइन संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किए। उनमें से आज का हमारा प्यारा तिरंगा चुना गया। श्रोताओं, वेंकैया जी का निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ। उन्हें हमारा शत शत नमन।
0: श्रोताओं, तिरंगा हमारी जान है, आन है और शान है
1: जी।
0: लेकिन बहुत जरूरी है ये जानना कि हम इसका सम्मान कैसे करें। आइए कुछ प्रमुख नियमों को जानते हैं।
1: श्रोताओं, पहली बात, राष्ट्र ध्वज हमेशा सम्मान पूर्वक फहराया जाना चाहिए। कभी भी इसे जमीन, पानी या फर्श को छूने नहीं देना चाहिए।
0: कभी भी फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त तिरंगा नहीं फहराना चाहिए। ध्वज का उपयोग किसी अन्य प्रकार से कभी नहीं होना चाहिए, जैसे मेजपोश, पर्दे, कुशन या सजावट की वस्तु के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
1: श्रोताओं, तिरंगे पर कुछ भी लिखना, चित्र बनाना या इसके वास्तविक रूप से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए
0: जी।
1: और हाँ, यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी अन्य ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या अधिक सम्मानजनक स्थान पर नहीं लगाया जा सकता।
0: जी हाँ श्रोताओं, तिरंगा हमें केवल अधिकारों की याद नहीं दिलाता बल्कि हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। जब भी हम तिरंगे को देखें तो अवश्य उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करें जिनकी कुर्बानियों से हमें आजादी मिली।
1: तो आइए श्रोताओं, हम सभी संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्र ध्वज का सदैव सम्मान करेंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे
0: जी। और अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: तो श्रोताओं, आज का प्रश्न है, राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए थे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन तैयार किए थे।
1: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी

0: radio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब करते हैं रुख आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर और सुनते हैं कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस।
1: इस कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताया गया है। विशेष रूप से उनके द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की चर्चा की गई है।
2: तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बता सकते हो ये बात किसने कही थी? भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतवासियों से खून की मांग करने वाले इस देशभक्त का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जमकर टक्कर ली। देश के लिए जान न्योछावर करने वाले इस वीर का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस कटक के एक प्रतिष्ठित वकील थे। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई और कॉलेज की पढ़ाई कलकत्ता में। जब वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीए के छात्र थे तभी एक दिन
3: अरे दिलीप।
4: हाँ सुभाष।
3: अरे उधर कहाँ जा रहे हो भाई, कक्षा में नहीं चलना क्या?
4: वो प्रोफेसर ओटन का पीरियड है ना?
5: हाँ है तो सुभाष, लेकिन कक्षा में मैं नहीं जाऊँगा। प्रोफेसर ओटन जिस तरह हम भारतीयों को गाली देते रहते हैं मुझे उससे सख्त नफरत है।
3: अरे तो तुम क्या समझते हो, मुझे गालियाँ खाने का शौक है, है? मगर इस तरह कक्षा में ना जाने से क्या होगा भाई?
5: कक्षा में नहीं जाएंगे तो अंग्रेज के मुंह से अपने देश के बारे में अपमानजनक बातें तो नहीं सुनेंगे ना?
3: अरे इस तरह कहां कहां से बचोगे? प्रोफेसर ओटन कोई अकेला अभिमानी अंग्रेज तो है नहीं इस देश में। स्कूल, कॉलेज, घर, दफ्तर, हाट बाजार, सभी जगह तो ये लोग हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों को लांछित और अपमानित करते रहते हैं।
5: तो फिर?
3: और हमारा दोष ये है कि हम विरोध करने की बजाय पीठ फेर कर चले जाते हैं। जिस दिन हमने सामने खड़े होकर इनका विरोध करना शुरू कर दिया ना, उसी दिन से इनका गाली देना भी बंद हो जाएगा।
5: कहना आसान है सुभाष, इन गोरों के आगे विरोध करने के लिए खड़ा कौन होगा?
3: हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही खड़े होंगे बंधु, जिनका ये लोग सत्ता के नशे में चूर होकर दिन रात अपमान करते रहते हैं।
5: सुभाष, प्रोफेसर ओटन आ रहे हैं।
6: Hey, you idiots! क्लास का टाइम में इधर खड़ा होकर क्या करता तुम?
3: आप ही के बारे में बात कर रहे थे प्रोफेसर ओटन।
6: Is that right? You black monkey?
5: जी सर, वो ऐसा था जी कि सर।
6: What? जी बोलता क्यों नहीं, क्या बात करता था?
3: हम ये कह रहे थे कि आप टीचर हैं, आपके मुंह से बात बेबात गाली शोभा नहीं देती।
6: You bloody rascal! You are telling me what to do? तुम्हारा यह हिम्मत?
3: हिम्मत की बात ना कीजिए प्रोफेसर, हिम्मत तो इससे भी ज्यादा है।
6: तो क्या करेगा? हा? क्या करेगा तुम? मारेगा हमको? यू स्काउंडरल, यू ब्लडी स्वाइन, बोलो क्या करेगा तुम? हम तुमको गाली देगा, तुम्हारा बाप को गाली देगा।
3: बस प्रोफेसर बस, इससे ज्यादा एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं।
6: ठीक है, हम तुमको देख लेगा। क्या नाम है तुम्हारा?
3: मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है मिस्टर ओटन, आइंदा याद रखिएगा।
2: अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ये सुभाष की पहली जंग थी। परिणाम ये निकला कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन सुभाष को कोई अफसोस नहीं हुआ। बाद में दूसरे कॉलेज से उन्होंने बीए पास किया। फिर अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि आईसीएस के बंधन में बंधकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना असंभव है। इसलिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और स्वदेश लौट आए। बंबई आते ही वे महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी के शांतिपूर्ण सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम उन्हें पसंद नहीं आए। गांधी जी ने उनकी परेशानी को समझा और उन्हें सलाह दी कि वे कलकत्ता जाकर देशबंधु चितरंजन दास से मिलें। देशबंधु

0: ये विचार सुभाष के जोशीले स्वभाव के अनुकूल थे। बस फिर क्या था, देशबंधु के नेतृत्व में सुभाष ने बंगाल के युवकों को संगठित करना शुरू किया। उन्हीं दिनों इंग्लैंड के युवराज भारत की यात्रा पर आए। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि युवराज के दौरे का पूर्ण बहिष्कार हो और हड़ताल की जाए। बंगाल में यह हड़ताल अभूतपूर्व रूप से सफल हुई। सभी बड़े नेता बंदी बनाए गए।
1: क्या कहते हो, सभी नेता पकड़े गए?
2: अरे ये महात्मा जी का आंदोलन है भाई, यहाँ नेता लोग जनता के आगे खड़े होते हैं, पहली लाठी गोली खुद खाते हैं, पहले जेल खुद जाते हैं।
1: तो क्या देशबंधु भी पकड़े गए?
2: हाँ, सबसे पहले तो उन्हीं को पकड़ा।
1: और अपने सुभाष बाबू?
2: वो भी आते ही होंगे। जब पुलिस हम लोगों को गाड़ी में भर रही थी तब भी वे बचे हुए लोगों को आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे थे। लो ये एक और दल आ गया और शायद सुभाष बाबू भी साथ ही है। क्यों सुभाष दा,
3: कितनी सजा हुई? नालायक कहीं के, सजा भी ठीक से नहीं दे सकते, उसमें भी कंजूसी कर गए।
1: क्या हुआ सुभाष बाबू?
3: अरे होगा क्या, इतनी बड़ी हड़ताल हुई और सजा दे रहे हैं सिर्फ 6 महीने की। मैं देशभक्त हूं कि कोई मुर्गी चोर?
0: लेकिन इसके बाद से जेल यात्राओं का ऐसा दौर शुरू हुआ कि 1921 से 1940 के बीच सुभाष लगभग 16 बार जेल गए। जब जेल में रहते तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता, लेकिन जैसे ही जेल से छूटते फिर आंदोलन में जुट जाते। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य इतना गिर गया कि उन्हें टीबी हो गई। जब भोवाली सेनेटोरियम में भी स्वास्थ्य नहीं सुधरा तो उन्हें स्विट्जरलैंड जाने की अनुमति दी गई। वहां पहुंचकर वे यूरोपीय देशों में भारत के प्रति सहानुभूति का वातावरण बनाने में लग गए। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1939 में वे फिर अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के भीतर ही एक प्रगतिवादी दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। एक बार फिर सुभाष और गांधी जी का मतभेद सामने आया। गांधी जी अंग्रेजों पर आई विपत्ति का फायदा नहीं उठाना चाहते थे, जबकि सुभाष का कहना था कि इस समय अंग्रेज दूसरे मोर्चों पर फंसे हुए हैं, उनकी पकड़ हिंदुस्तान पर से ढीली हो रही है, यही सही वक्त है जब हमें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहिए। सुभाष के ऐसे वक्तव्यों से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1940 में उन्हें फिर बंदी बना लिया। सुभाष ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। इस पर सरकार ने उन्हें जेल से तो छोड़ दिया, लेकिन उनके घर पर सशस्त्र पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया।
3: कौन, शिशिर?
4: हाँ सुभाष काका, मैं हूँ, दरवाजा खोलिए।
3: आओ अंदर आ जाओ, क्या खबर है?
4: सब तैयारी हो गई है, पीछे वाली गली में गाड़ी खड़ी है। कलकत्ता में आपका दिखाई देना ठीक नहीं है काका। ये सोचकर हम लोगों ने योजना बनाई है कि आप बिहार में गोमो से ट्रेन में बैठेंगे, मैं स्वयं गाड़ी चलाकर ले चलूंगा।
3: ठीक है चलो, लेकिन मेरे ये कपड़े?
4: उसका भी प्रबंध हो गया है, आपके लिए तंग पैजामा, शेरवानी और तुर्की टोपी आ गई है। आप रास्ते में कहीं बदल लीजिएगा।
3: ठीक है।
4: उस वेशभूषा में आपकी ये दाढ़ी बिल्कुल ठीक लगेगी, किसी को शक नहीं होगा कि आप सचमुच मौलवी जियाउद्दीन नहीं है।
3: तो फिर ठीक है,

0: की मदद की।
1: दरवाजा खोलिए साहब, मैं रेलवे कर्मचारी हूँ। इन मौलवी साहब का रिजर्वेशन है यहाँ से।
2: खोलता हूँ भाई, खोलता हूँ, अभी खोल देता हूँ। आदाब अर्ज़ मौलवी साहब।
3: आदाब। ये सामान यहाँ रख दीजिए।
2: लाओ लाओ।
3: शुक्रिया शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गार्ड साहब।
1: नहीं साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है।
3: अच्छा, खुदा हाफिज।
1: खुदा हाफिज साहब।
4: लो भाई, यहाँ तक तो आसानी से आ गए, अब कल न जाने क्या हो। ये अखबार कहाँ गए?
1: हाँ, ये रहा। कल दिन भर पढ़ने के साथ साथ चेहरा छिपाने के भी काम आएगा।
4: अब थोड़ी देर आराम कर लूं।
0: ट्रेन से पेशावर पहुंचने पर सुभाष को कुछ विश्वस्त साथी मिले, जिन्होंने सीमा पार करने में उनकी मदद की। इस तरह कभी पैदल, कभी खच्चरों पर, तो कभी ट्रक वालों से मुफ्त सवारी मांगते हुए सुभाष काबुल पहुंचे। काबुल में उन्होंने कई विदेशी दूतावासों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और आखिर इटालियन दूतावास के जरिए यूरोप जा पहुंचे। उन्होंने जर्मनी में हिटलर से भेंट की। सुभाष ने बर्लिन में रहकर वहां रहने वाले भारतीयों को इकट्ठा करके फ्री इंडिया लीग की स्थापना की। जर्मनी की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण आरंभ किया। स्वयं सुभाष भी इस पर अपने विचार व्यक्त करते थे। उधर जापान में भी एक पुराने भारतीय क्रांतिकारी श्री रास बिहारी बोस भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयत्नों में लगे हुए थे। इन लोगों की योजना थी कि युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे जिन भारतीय सैनिकों को जापान और जर्मनी में बंदी बना लिया है, उनकी एक सशस्त्र सेना संगठित की जाए। इस सेना का नेतृत्व करने के लिए सुभाष को सिंगापुर बुलाया गया। 5 जुलाई 1943 को उन्होंने सुप्रीम कमांडर की हैसियत से आजाद हिंद फौज के विधिवत गठन की घोषणा की। यहीं उन्होंने एक नया नारा बुलंद किया।
5: जय हिंद,
6: जय

16 जनवरी की रात वे पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर गायब हो गए। इसमें उनके भतीजे शिशिर बोस ने

0: यद्यपि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता यही मानते थे कि एक साम्राज्यवादी शक्ति को हटाने के लिए दूसरी साम्राज्यवादी शक्ति का सहारा लेना उचित नहीं है, मगर नेताजी का कहना था कि शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है और उससे मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। उधर युद्ध की भीषणता बढ़ती जा रही थी। आजाद हिंद फौज की टुकड़ियों ने भी कई मोर्चों पर युद्ध किया। खराब मौसम, कम रसद और बीमारियों के बावजूद नेताजी के सैनिकों के हौसले बुलंद थे। बर्मा की ओर बढ़ती हुई आजाद हिंद फौज कोहिमा तक पहुंच गई। भारत भूमि पर आजाद हिंद का झंडा फहराया गया, मगर इस बीच बहुत से सैनिक हताहत हुए। आजाद हिंद फौज को और अधिक बलिदानी वीरों की आवश्यकता थी। 22 सितंबर 1944 को रंगून का जुबली हॉल खचाखच भरा हुआ था। शहीद जतीन दास का स्मृति समारोह था। जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे गूंज रहे थे।
1: मेरे बहादुर साथियों, तुम लोगों ने आजादी के लिए बहुत त्याग किया है।

0: लेकिन अभी प्राणों की आहुति देना बाकी है। मैं भारत की स्वतंत्रता को स्पष्ट देख रहा हूं, वो अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन लेकिन अभी उसे खून की जरूरत है, उसे ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो अपने हाथों अपना सर काटकर उसके चरणों पर न्योछावर कर सके, जो उसके लिए अपना खून बहा सके। बोलो साथियों, क्या तुम लोग तैयार हो?
1: हम तैयार हैं।
0: तो फिर ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
2: नेताजी, मेरे खून की एक एक बूंद ले लीजिए।
0: नहीं नहीं नहीं, इस तरह बातें बनाने से कुछ नहीं होता। मुझे इस प्रतिज्ञा पत्र पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए।
3: मुझे दीजिए एक कागज, पहले मैं हस्ताक्षर करूंगी।
0: ठहरिए ठहरिए ठहरिए, ये आजादी का परवाना है, इस पर सादी स्याही से हस्ताक्षर नहीं किए जाते, इस पर खून से हस्ताक्षर होते हैं। जिसकी नसों में सच्चा भारतीय खून बहता हो, जिसे अपने प्राणों का मोह ना हो, वो आगे बढ़े और इस पर हस्ताक्षर करे।
3: मैं करूंगी हस्ताक्षर, कागज मुझे दीजिए।
1: नहीं, नहीं, कागज मुझे।

और उस दिन नेताजी के आह्वान पर सैकड़ों हजारों लोगों ने आगे बढ़कर आजादी के उस परवाने पर अपने खून से हस्ताक्षर किए। पता नहीं उनमें से कितने आजादी की सुबह देखने को जिंदा रहे और कितने आजादी की राह में शहीद हो गए।

0: खुद नेताजी का विमान 18 अगस्त 1945 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 15 अगस्त 1947 की सुबह देखने के लिए नेताजी जीवित नहीं रहे, मगर जैसा उन्होंने खुद कहा था,
1: ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम में से कौन भारत को आजाद देखने के लिए जीवित रहेगा। यही काफी है कि भारत आजाद होगा और उसे आजाद करने के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पित कर देंगे।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस, और आइए अब सुनते हैं एक विशेष गीत जिसने भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान असंख्य युवाओं को प्रेरणा दी और उन्हें क्रांति पथ पर अग्रसर होने के लिए आह्वान किया। शीर्षक है जवानों उठो।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा देश के जवानों को संदेश दिया गया कि वे देश के लिए पूरे समर्पण और दृढ़ निश्चय के साथ काम करें और इसे विकास की दिशा में आगे ले जाएं।

0: श्रोताओ, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत जवानों उठो, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: हुणे तुसी सुन रहे सी NCERT वालों प्रायोजित प्रोग्राम उमंग। तुसी ट्यून किया है आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 MHz अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते। स्टूडियो दी घड़ी ते समा हो रहा है जी 8:30। आओ सुनदे हां प्रोग्राम पंज पाणियां दे गीत। नमस्कार श्रोतियो, मैं जसविंदर कौर हाजिर हाँ पंजाबी गीतां दा प्रोग्राम पंज पाणियां दे गीत लैके। श्रोते इस प्रोग्राम विच शामिल होण दे लई सानू खत भेज सकदे हन जां फिर वट्सएप ते सुनेहे भी भेज सकदे हन। नंबर

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
2: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं।
3: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में चर्चा को लेकर विपक्ष पर बार बार अपना रुख बदलने का आरोप लगाया है।
4: अरे विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार

0: का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है, सदन चलने नहीं देना है।
1: उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से हैं, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि नौ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
2: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 ट्रिलियन की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली है।
1: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में सहयोग देगी। इस बीच आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक आयोजित की। श्री जाधव ने कहा कि ये समिति हिंदी के उपयोग और प्रचार को मजबूत करने और इसे जन कल्याण तथा संचार का एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडरब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में लगभग 440 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पंजीकृत हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने 52 गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए 113 अधिकार पत्र प्रदान किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और माओवाद से अत्यधिक प्रभावित रहे बस्तर इलाके में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।
3: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में शांति, एकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर आज से तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं। यह यात्रा बस्तर के दुर्गम और आदिवासी इलाकों से होकर गुजरेगी। विशेष तौर पर यह यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जहाँ पूर्व में माओवादियों ने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। 3 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 14 अगस्त शुक्रवार को जयपुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर पहुंचकर संपन्न होगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के भिवानी में शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र में देशभक्ति रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। त्रिपुरा के

0: मंत्री माणिक साहा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। मिजोरम में दोपहिया वाहनों की एक रैली का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। मुंबई में आज घाटकोपर पश्चिम के चिराग नगर स्थित एक चौल में भूस्खलन होने से 7 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। सुबह एक छोटी पहाड़ी से मिट्टी और मलबा चौल के 2 से 3 कमरों पर गिर गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12 की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। दुनिया के कई हिस्सों में आज महत्वपूर्ण खगोलीय घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बेंगलुरु स्थित रमन अनुसंधान संस्थान ने सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की जटिल चुंबकीय संरचना का अध्ययन करने की व्यवस्था की है। भारत से दिखाई न देने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रात 9:04 पर शुरू होगा और चंद्रमा की छाया सूर्य को 2:18 तक ढक कर रखेगी। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारिशन पद्मा गीशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाथियों के संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री यादव ने कहा कि हाथियों की सुरक्षा के लिए कई आधुनिक उपाय किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 2 दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Parliament passes bill to enhance funding and development of cooperative sector, also gives nod to legislation to rename state of Kerala as Keralam. Both houses refer Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. Home Minister Amit Shah says he is ready for detailed discussion on NEET paper leak related issue, writes letter to Lok Sabha Speaker. Finance Minister Nirmala Sitharaman

कच्चे धागे इस फिल्म का गीत था। लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं।

नौशाद की तर्ज शकील बदायूनी का लिखा गीत था, आशा भोसले की आवाज में। फिल्म थी दिल दिया दर्द लिया।

रवि की तर्ज थी शकील बदायूनी का लिखा गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म थी चौदहवीं का चांद, गेटवे ऑफ इंडिया। इस फिल्म का गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया।

राजेंद्र कृष्ण की का लिखा ये नगमा था, मदन मोहन का संगीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी के गाए। फिल्म गेटवे ऑफ इंडिया के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम आपके लिए अब संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है कि शोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शोधा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में बातें उस अभिनेत्री की जिसने फिल्मी दुनिया में अपने अभिनय, अपने नृत्य और अपनी खूबसूरती से हंगामा मचा के रखा था।
1: हवा

0: के फनकार कार्यक्रम आज समर्पित है एक खूबसूरत अभिनेत्री की याद को।
1: लाए!

चार बरस की थी श्रीदेवी जब उन्होंने बतौर बाल कलाकार थुनैवन नामक फिल्म में काम किया था और इसके बाद बतौर बाल कलाकार उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। वो बेबी श्रीदेवी के नाम से जानी गई और केरला स्टेट का बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड मिला और आगे चलकर कई तरह के अवार्ड्स श्रीदेवी को मिले। फिर फिल्म जूली आई जिसमें श्रीदेवी ने अभिनेत्री लक्ष्मी की छोटी बहन का किरदार निभाया था। सन 19

1976 बतौर हीरोइन श्रीदेवी ने फिल्म संसार में कदम रखा तमिल फिल्म मुंडुरु मोडीचू के जरिए। निर्देशक थे महान निर्देशक के बालचंदर। दक्षिण भारत में श्रीदेवी का एक बड़ा ही जबरदस्त और कामयाब करियर रहा है, लेकिन यहां हम उस करियर की बातें नहीं कर रहे, हमें तो भाई हिंदी फिल्मों की बातें करनी है। तो आइए सन 1979 पर आते हैं, जहां श्रीदेवी ने बतौर हीरोइन हिंदी सिनेमा के पर्दे पर अपना पहला कदम रखा। फिल्म थी सोलवा सावन।

0: इसकी 4 साल बाद श्रीदेवी ने जैसे मुंबईया फिल्म जगत में तहलका ही मचा दिया। ये फिल्म थी हिम्मत वाला। श्रीदेवी के हीरो थे जितेंद्र।
1: मैं

0: फिल्म हिम्मत वाला ने जबरदस्त धमाका किया। इस फिल्म के गाने बहुत चले, ये फिल्म भी बहुत चली और इसके बाद श्रीदेवी भी हिंदी सिनेमा में खूब खूब चली। आइए उस दौर की कुछ और फिल्मों की बातें की जाएं। फिल्म तोहफा।
1: बंकर,

0: जाए, दोनों आँखें मारो तो छोरा पट जाए, छोरा पट जाए, दोनों आँखें मारो तो छोरा पट जाए, छोरा पट जाए।
1: ए पंकज।
2: इसके बाद जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी ने उस दौर की कुछ नामी फिल्मों में काम किया। एक छोटी सी झलक इन गानों की, फिल्म मवाली।
3: माना माना मैंने माना मैं हूँ मवाली, माना माना मेरी हर बात निराली, मवाली हूँ मैं शैतान तो नहीं, गिरा हुआ कोई इंसान तो नहीं, रामा रामा रामा रामा रामा रामा रे।
2: फिल्म जस्टिस चौधरी।
4: पाम पाम पाम पाम मम्मा मिया मम्मा मिया, प्यार की गाड़ी दे चलाओ, एक्सीलेटर और दबाओ,
0: पिंगली में मोड़ बहुत है, देखो दिल के तोड़ बहुत है, रास्ता मुरझाने वाला है, मेन रोड आने वाला है, स्टॉप
4: लव
0: मम्मा मिया
4: पम पम
0: मम्मा मिया
4: पम पम।
2: सन 1986 में श्रीदेवी ने फिल्म नगीना में काम किया। ये अपने दौर की एक बहुत ही कामयाब फिल्म बन गई।

मिस्टर इंडिया एक कल्ट फिल्म बन गई और इस फिल्म में श्रीदेवी के अभिनय की बहुत तारीफ हुई। इस फिल्म में श्रीदेवी ने ये गाना भी गाया था पर्दे पर, जिसे असल में गाया कविता कृष्णमूर्ति ने।

0: जब मिस्टर इंडिया की बात हो तो एक गाने की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। सरोज खान की कोरियोग्राफी वाला गाना फिल्म मिस्टर इंडिया।
1: काटे नहीं कटते ये दिल ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। काटे नहीं कटते ये दिल ये

0: सन 1989 में ही श्रीदेवी ने यश चोपड़ा की एक बेहद महत्वाकांक्षी फिल्म में काम किया। इस फिल्म पर यश चोपड़ा बरसों बरस से काम कर रहे थे और आखिरकार कई हीरोइनों के नाम की संभावनाओं की खबरों के बीच ये तय हो गया कि श्रीदेवी ही हैं यश चोपड़ा की
1: चांदनी। ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी।
0: जब फिल्म चांदनी की बात हो तो भला इस गाने की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है।

सन 1992 श्रीदेवी के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण साल बन गया। इस साल श्रीदेवी अमिताभ बच्चन के साथ नजर आईं। फिल्म थी खुदा।

साल 1993, श्रीदेवी की एक ऐसी फिल्म आई जिसे बहुत लोग आज याद नहीं करते। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही थी, रूप की रानी चोरों का राजा। इसके बाद श्रीदेवी संजय दत्त के साथ धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म गुमराह में नजर आईं। निर्देशक थे महेश भट्ट। सन 1994 में श्रीदेवी अनिल कपूर के साथ फिल्म लाडला में दिखी। सन 1997 फिल्म आई जुदाई। इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ अनिल कपूर और उर्मिला मातोंडकर थे।

0: इसके बाद श्रीदेवी ने जाने माने प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी रचा ली और वो फिल्म संसार से लंबे समय तक दूर हो गई। लंबे समय तक फिल्म संसार से दूर रहने के बाद श्रीदेवी ने रुपहले पर्दे पर वापसी करने का मन बनाया। साल 2011 में आई गौरी शिंदे की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश।
1: सॉरी, माय वाइफ्स इंग्लिश इज नॉट वेरी गुड, सो
2: मेरा केविन, दिस मैरिज इज अ ब्यूटीफुल थिंग, इट इज द मोस्ट स्पेशल फ्रेंडशिप ऑफ टू पीपल हु आर इक्वल। लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी मेरा, समटाइम्स यू विल फील यू आर लेस केविन, समटाइम्स यू विल ऑल्सो फील यू आर लेस देन मेरा। ट्राई टू हेल्प ईच अदर टू फील इक्वल, इट विल बी नाइस।
0: इस फिल्म में श्रीदेवी के अभिनय की बहुत तारीफ हुई।

श्रीदेवी की आखिरी फिल्म बन गई फिल्म मॉम, और इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की गई। लेकिन जब तक ये घोषणा आई, श्रीदेवी इस फानी दुनिया से अलविदा कह चुकी थी।

24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी का निधन हो गया। जब राष्ट्रीय पुरस्कार बांटे गए तो अपनी मां की ओर से श्रीदेवी की बेटियों ने और उनके पति बोनी कपूर ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया।

जानी मानी अभिनेत्री श्रीदेवी अपने चाहने वालों की याद में हमेशा रहेंगी और बनी रहेंगी वैसी ही शोह, चंचल और खूबसूरत अदाकारा।

0: ये था अभिनेत्री श्रीदेवी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाया गीत कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। सामिन, कहते हैं प्रेम एक ऐसी आग है जो अदृश्य रूप से जलती है, एक घाव जो दर्द करता है पर महसूस नहीं होता। यूं तो प्रेम करने का दावा हम सभी करते हैं, लेकिन अपने देश की माटी से, अपनी मातृभूमि से जिसने प्रेम किया, उन्हें आज हर कोई सैल्यूट कर रहा है। गीतकार की कलम में इतनी ताकत होती है कि उनकी कलम से निकले गीतों से वतन परस्ती का सोया हुआ जज्बा जाग उठता है। आजादी के परवानों की जिंदगी में मकसद को बयां कर

वतनपरस्ती का सोया हुआ जज्बा जाग उठता है। आजादी के परवानों की जिंदगी में मकसद को बयां करता ये गीत आज भी सर चढ़कर बोलता है। गीतकार रामप्रसाद और प्रेम धवन ने इसे कलमबद्ध किया। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला।

0: गंदे पसंद।
1: नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, बच्चे की सरल और देश के प्रति अटूट प्रेम को दिखाता ये गीत हम सभी ने सुना है। मेरा जूता है जापानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, देश की संस्कृति और पहचान को दर्शाता ये प्यारा सा गीत। जिस देश में गंगा बहती है हम उस देश के वासी हैं, देश के गौरव और संस्कृति की महानता को दर्शाता ये गीत। ये आह्वान करते हैं सभी गीत कि हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं, इसकी माटी को नमन करते हैं। गीतकार शैलेंद्र की कलम से निकली रचनाओं ने देश प्रेम को दर्शाया और कहा, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो उतार ला जमीन पर।

इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। सचमुच शकील बदायूनी का लिखा ये गीत केवल एक गीत नहीं था बल्कि एक आंदोलन था। आंदोलन, उनकी कलम में हर वो रंग शामिल था जिसकी समाज को दरकार है। इन गीतों को सुनकर ही देश के जाबाज सैनिकों के खून में एक उबाल सा आ जाता था। शकील साहब द्वारा रचित ये गीत नए आशावाद को प्रस्तुत करने वाला जैसे देशभक्ति गीत ही बन गया था।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अपनी मिट्टी और अपने देश के प्रति अथाह मोहब्बत ही हमें देशभक्त बनाती है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती जैसे कालजयी गीत रचने वाले गीतकार गुलशन बावरा कितने गहरे देशभक्त होंगे, ये गीत सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है। माँ धरती के गौरवगान से जुड़े गीत है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। गीतकार इंदिवर की कलम से निकला ये गीत भारत की संस्कृति और मूल्यों पर आधारित है। प्रेम सत्य और एकता की बात करता गीत, भारतीयों का अपनी जड़ों पर गर्व करता ये गीत, अपनी मातृभूमि से प्रेम करने का आग्रह करता गीत। इंदिवर साहब के गीतों की तासीर आज भी मोहब्बत बिखेरे हुए है, लेकिन जब उन गीतों से मिट्टी की खुशबू आने लगी तो जिंदगी और मौत का फर्क वो यूं समझा गए हमें। जिंदगी को बहुत प्यार हमने किया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते जमाने में आए मगर, हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम, हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम।

गीतकार साहिर लुधियानवी ने भी मातृभूमि को माँ की तरह प्यार किया। उनकी कलम ने भी देशभक्ति की भावना के बीज बोए। घनघोर अंधेरे के बीच भविष्य की चमकीली किरणें बिखेरते रहे उनके कालजयी गीत। साहिर ने दुनिया को बहुत कुछ कह दिया। वे लिखते हैं, रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। कहते हैं, सच्चा देशभक्त अंजाम की परवाह किए बिना सच बोलता है। वही साहिर गीतकार ने कहा, इश्क आजाद है हिंदू न मुसलमान है इश्क, इश्क आजाद है हिंदू न मुसलमान है इश्क, आप ही धर्म है और आप ही ईमान है इश्क, आप ही धर्म है और आप ही ईमान है इश्क।

या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़

0: बनेगा।
1: देश प्रेम और माटी के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा कोई इन रणबांकुरों से सीखे। अपनी मोहब्बत का इजहार एक शहीद ये कहकर करता है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। जंग के मोर्चे पर तैनात एक फौजी के जज्बातों को गीतकार कैफी आजमी ने बहुत खूबसूरती से कागज पे उकेरा। अगर ये गीतकार ये शायर केवल इश्कबाजी पर ही अटके रह जाते तो शायद उनकी कलम ये विद्रोह कभी ना कर पाती, ये गीत कभी ना उकेर पाती।

किसी नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन।

0: साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
1: और अब छाया गीत कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दे इजाजत, नमस्कार।

अभी न जाओ छोड़ कर।